FM बैंड 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बागों में हम जो मिले तो गाए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले, तेरी खुशबू से भर जाए।

और प्यार हो गया फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया नुसरत फतेह अली खान ने।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना बरसात फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

शिव कुमार राठौर की आवाज में अभी आपने सुना बॉर्डर फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना दीवाना फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: करे तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग का।

0: चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री बसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने सवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बसंती। अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? हा?
2: क्या करूँगी? गमक हुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? अरे चल सब खोल रहे हैं तुझे। चल ना जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय

0: मैं सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
1: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तो बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू विधवा हो गई, तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती,
2: बेटी बसंती,
1: उदास मत हो।
2: उदास
1: ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी।
2: यात्रा साबित
1: इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
2: तुम अपने जीवन दे सको,
1: मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगे पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है, चल, ठीक है, चल, चल, चल।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।

कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला।

0: सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है।
3: हाँ।
1: गाँव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा? अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
4: चलो
3: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, हीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ

जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था। और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: FM 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। यमुना जल परियोजना के लिए MOU पर राजस्थान और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। आज नई दिल्ली में MOU को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पाटिल ने बताया कि इस MOU पर अगले सप्ताह हस्ताक्षर किए जाएंगे।
5: आज दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। अन्य मुख्यमंत्री दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरप्लस वाटर आज उसका नया MOU करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी वो तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो MOU का उनको एक्सचेंज करेंगे। इस तरह का अभी आज तय हुआ है।
4: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही जल बंटवारे की समस्या समाधान के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा।
6: यमुना के पानी की मांग लंबे समय से हो रही थी और 94 का ये जो फैसला है वो आज बैठ करके हमारे सभी अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ाया है। जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में MOU उसका होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से पानी की कमी है और राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, वो राजस्थान का हिस्से का पानी इसमें मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद माननीय पाटिल साहब को और माननीय हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी धन्यवाद देता हूं।
4: यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र को पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जोधपुर के एम्स और पावटा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने पावटा अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने के मामले में ये दौरा किया है। श्रीमती राठौर ने एम्स में भर्ती 2 और पावटा अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य और उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को सभी मरीजों की 24 घंटे निगरानी करने और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों और आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में आवश्यक तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों पर रक्षा पर भी चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं

0: मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। हनुमानगढ़ में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बरसात हुई। वहीं पिछले दिनों से जारी प्री मॉनसून गतिविधियों से लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिली है। हालांकि उमस वाली गर्मी से लोग परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर को छोड़कर लगभग सभी जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष प्री मॉनसून गतिविधियां अच्छी रही हैं। 1 से 21 जून के बीच प्रदेश में सामान्य से 41% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को खेलों के माध्यम से फिटनेस, शांति, एकता और भाईचारे के लिए प्रेरित करना है। इस साल की थीम यू कैन डू दिस, लेट्स मूव रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और उभरती प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम परिहारी।

0: पुण्यादि कार्यक्रम छोड़ नाली संग बनो नो घना घना राम राम गुंजन बन घना सदा राम राम राम राम शुभ बन धने बे और राम राम सगली सखियों ने जुबान बड़े आपो तू मुखाते भवन आए गए और बाट भी जो रहे बस सखियों देखो थोर चेहरो देख कौन सके पर हूं देख रही हूं
1: अच्छा
0: और रोज हां आप इतना दिनों से मरिया तो रंग में फर्क को करे बुरा घट लग रहा है
1: देखो जवाब है राज राज तो उन पछे बताऊं सखियों पर मोंडो नहीं देख सके भले नहीं देखे लेकिन अपनी आवाज रो जादू तो वो तक पहुंच सके और अपनी आवाज में जितो उत्साह है उसे तो सखियां समझ जावे कि आप उत्साहित हो या आप दुखी हो अपनी क्यों कैरी भी आवाज में अपन टसको भी बताओ ठा पड़ जावे कि फलाने ना आज कहीं कहीं पीड़ा है का मन में कई बात है तो ए अपर जो भाव है नी मोंडेरा भाव ए भाव अपने बोलन की ताकत जिके ओ जिसको आप बोलो है ए शब्द जो होया करे ए सामने ना पकड़ में आ जाए
0: वैसे गुंजन मैन ए जो था बात कही नहीं वास्तव में मन तो नई चीज लगी
1: अच्छा
0: एक बात कैसा हो तो जान तो करो नी के आप मान लो भले आपकी शक्ल नहीं दिख रही है अपर मन में की है अपर बात करन तो सामने ना फट पकड़ में आ जाए तो ए तो एक प्रकृति की देन है आप महिलाओं ने महिलाओं ने क्या पुरुषों ने
1: भी है ए सब बना है
0: पर कोई कोई नो को नहीं है कोई कोई रो मतलब ए आप कौन कह सकते हैं सबरा स्वभाव है जेड़ा हो पर कोई रो तो इतो चतुर्य समझो दिमाग हुई इतो बुद्धि हुई कि एकदम ए आना तो खुन खुनिया चले है नी
1: फोन आला हाँ
0: ये मैं आना आप जो मान लो अपर विकरी कोई सास रहे बहु गिरणी है माँ है के बहन है कैसे अपन बात करनी है और वो हेलो इतो कह उम्र महीना सेम रोमांट था
1: बिल्कुल बिल्कुल बाई रे रोन में राग
0: राग
1: तो वो जो है जो राग जो भी बेनी वो अपने एक आजकल हेलो में ठा पड़ जावे
0: ये तो देखो अंतरात्मा मिलोड़ी हुई और जो जो रिश्ता एक एड़ा अपरा प्रगाढ़ है एड़ा अपरा रिश्ता घुल मिलोड़ा है क्योंकि मैं अपन एक दूसरे की आवाज सुन ठा पड़ जावे कि आज खुश है या आज इन्हें तकलीफ है या आज मैं तो कहीं लुकाए रही हूँ
1: देखो स्वभाव जीवन में आप ये मैं आया हूँ और हाँ। जितना बरस आपको लिया है भले 10-20-15 ये अपन अनुभव दे रही
0: है
1: और आप जो लोग आस पास रहो बढ़िया रोज हुआ ना देखा बढ़िया भले वो आप औलाद है या अपने आस पास का भी जो रिश्तेदार है अपना कोई भी है आप जो रोज देखो रोज के रूप में देखो और अचानक मेरे रूप थोड़ो सो बदलोड़ो अपन मेरी आवाज सु लगे या मेरे चेहरा सु लगे तो समझ में अपन आ जाए करे और एक की एक है मनुष्य ने जो चातुर्य रो गुण मिलोड़ो है
0: हाँ।
1: लगभग सब में है
0: पर
1: तो
0: देखो उन दिन मैंने बात तो सो कही अपन बहनों भी ये चीज सु वाकिफ है पर कहीं नहीं हर कोई भी भली बात में कोई ना कोई किरड़ू भी होया करे कोई कोई अपवाद भी
1: अपवाद भी
0: तो कदी कदी की हुई कि कोई कोई ना ये बात समझ में कोई आवे कमलो आदमी कितो दुखी है
1: की चाह रहे
0: या वो की चाह रहे है या वो कम बात करनी चाह रहे है या वो थोड़ी बत्ती बात करनी चाह रहे
1: है
0: ए चीज रुपये में ना 25 पैसा तो पक्का मानो मुझे मैंने कौन समझ में आवे
1: सही बात
0: कौन समझ में आवे कि कमले री भावना की है तो अपना चाहिए कि हमेशा कमले री भावना देख के अभी बात करो
1: ए तो ठीक है क्या रुपये में 12-14 एड़ा हुई जो को समझ में आवे लेकिन ये रोको की कर सको मना लगेगी ये कुछ कर कौन सके
0: हमें जो आप बात कर रहे हो नी
1: हाँ हाँ
0: हमें जो जो सुन रहे हो ना या महसूस हो सके ना हूँ तो मैं एकदम सही रखो कोई ना लग सके ना हूँ
1: अच्छा
0: गलती करो
1: हाँ हाँ
0: तो हमें जो कोई दिमाग में कदे कदे देखो ये तो संसार है और ग्रस्त जीवन है जिसे मैं संगो सु दो रोज जीवन है ग्रस्त में 50 तरीके की चीजें हो गई कदे कदे तो खुश हो यहाँ पे हंसे हंस लो हंसल कर लो और कदे कदे कोई महिला परिवार से थोड़ो नीच हुए तो वो बात करने की इच्छा कौन हुई
1: वही एडो भी वही तो हूँ है कहना चाहूँ शुभ है कि ज्यादा पर मूड नहीं है ज्यादा बात करना नहीं है पर हमें कोई एडो घर में आई जो
0: आ जाओ
1: जिको घर अजीज है
0: हाँ
1: घर ही देख रहे लेकिन आपको ना आपके दर्द को नहीं बताना चाहूँ तो आपको ना आपकी माछली हंसी को बतावनी पड़े
0: वो तो मैं कला कर
1: माछली बतावनी पड़े लेकिन समझदार आदमी हुए मैं भी समझ जावे कि ए माछली है या मैली है या असल दी हंसी
0: भाई देखो समझदार उम्र कद समझदारी दिखे के जब ये चीज ना उन्हें एहसास हो जावे कि भाई ये ना कुछ है या मैं कुछ छुपा रहा तो झट हुए टाइम में वो ज्यादा टाइम ये रुकन दे वो आप झट निकल जाओ
1: निकल जावे
0: वो समझदारी है
1: तो समझदारी आप और सख्यों में भी है और सख्यों में बात समझे भी है कि कैसे रूप कितने रूप में कितनी बात करें। हाँ। और अपनो ग्रामीण परिवेश तो वैसे अपन ने शिक्षा दे कि घणो थोड़ो बोलना और घणो सुनाना तो ए आली कहावत तो है तो अपने परिवेश में रमोड़ी है और अधिकतर अधिकांश महिलाओं ने तो सीख घर में पीर में दियोड़ी जुए तो वो ये ना अपन उगाड़न नहीं है और बताओ नहीं ज्यादा
0: जल्दी होने ना मना तो लगियो थोड़ो जो रंग में बदलाव आ गया तो लाल ले दिन में महीना थोड़े आज को मतलब थोड़ी घणी लग गई थी दाना ना भी बताया थोड़े तकलीफ हुई थी तो थे मनो लगे 15-20 दिन महीनों दिन घंटो बाहर को नहीं
1: ना महीनों दिन तो को नहीं 10-12 दिन में जरूर
0: गर्मी में अगर 10 दिन भी आदमी मर तो देखो रंग में
1: सारा गाय
0: बात
1: मतलब अपनी जो प्रकृति है मौसम है अपने सीख रहे मौसम में कौकर तो अपन मित्र तो है शत्रु तो को नहीं मौसम भले हमें बाहर गर्मी है तो ये मतलब है तो को नहीं क्या शत्रु को नहीं
0: शत्रु को गर्मी शत्रु
1: को नहीं मैं अगर मुँह सही सलामत होती तो कौन से बाहर जाना भी पड़ता काम करना भी पड़ता पर मेरा बचाव रहा तरीका था जो को पहले अपना होती तो ये कारण हमें धनो रूप में फर्क देखा अगर वो बाहर निकलती मोने मधे कपड़ो ढक के या माथो ढक के निकलती तो शायद मनो थोड़ा सी थोड़ा महसूस भी नहीं होता कि मेरे कुछ होयो है या मेरे की लगी तो चेहरे का रंग क्यों बदलियो क्योंकि हूँ धूप में निकलती निकलती एकदम 10 दिन छाव में रही छाव में रही तो चेहरे की रंगत निखर गई तो मौसम आपो दुश्मन तो को नहीं लेकिन मौसम में की है कि आपो मौसम के अनुसार ओड़ा कृत्य करो को नहीं अगर आपो मौसम के अनुसार रहता रहो नहीं अगर सर्दी है तो अपन पूरा कौन नाक ढक के हलना है आपको रखना गर्मी है तो भी कौन नाक ढकना है लेकिन सूती कपड़े से ढकना है कपड़ा पहनना है तो ओड़ा पहनना है जिसके सो अपने शरीर में पसीनो या जलन सूती कपड़ा सो कोनी वे खुजली कोनी वे पसीने कारण जो शरीर में रैशेज पड़े जो आप चंदी और
0: अपारो तो देखो गुंजन में अपारो ग्रामीण जो परिवेश है वो लगभग रुपये महीना 90 पैसा तो सूती जे कॉटन ही जे चाहे अपार जो किसान भाई है हमारे देख लो धोती है और मथे कुर्तो हुई तो सूती पोती बांधे तो सूती अंगोछरा से तो सूती और अपार जो बहनों है वो भी लगभग जो अपार पहना हुआ है वो लगभग पर हाँ ठीक है समय बदली हुए तो अगर कोई जो प्रोग्राम हो रहा है जो हमें उड़ा दीजिए तरी तरह भी कपड़ा करावना पड़े वो पहने भी
1: देखो समय
0: ज्यादा से ज्यादा ये मौसम में अपर बहनों चाहिए कि सूती कपड़ो
1: धारण करके रखें ज्यादा चांदी लो ज्यादा कपड़ा ना लो या रेशमी कपड़ो जो वे जो कहते हैं भजन में ले जाओ जैसे आप जो कपड़ा रेशमी करें तो घबराहट हो जाएगी और घबराहट इतनी ज्यादा हो जाएगी अपन थोड़ा बहुत हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़े सही बात है और ये पूरी तरह सत्य बात है क्योंकि आपको जब कपड़ों पहरे नहीं तो अपना खुद ना मोह महसूस मना घुटन हो रही है आपको तुरंत जाए कपड़ा बदला खुलो खुलो कपड़ो पहनना चाहे
0: कुछ ढीलो भी हो
1: कुछ ढीलो होना
0: कपड़ो गर्मी के मौसम में तो सूती है और एकदम तंग कपड़ा नहीं होना हवा ना तो थे देखो नी आधी हवा आपकी बात तो वो ही मान रहे
1: सही है
0: ये हवा ऐसा परेशान किया है कि पूछो मत हमें अपने तो खपो ही हवा तो अपने बचो फिर भी वो हवा बाहर रूप में अपने टबरा मत हावी हो रही है क्योंकि हटाने बहुत मुश्किल
1: है शोभा ए थोड़ी को बात कही है भी बहुत बढ़िया बात है सच्चे ने बताई से कुछ माँ बाप की करे छोटा बच्चों ने जबरदस्ती ओड़ा कपड़ा पहराऊं फैशनेबल वे फैंसी वे वो ए को नहीं देखे कि टाबर वे में कंफर्टेबल मतलब को नहीं सही तरीके से रह सके या नहीं रह सके वे ना वो खुपे हुए ना कि मतलब उसे कोई तकलीफ हो रही है तो वो ना लेकिन फैशन की दुनिया में ओड़ा हो रही है तो बच्चों ने वे हिसाब से रखे और कोई तरीके की बच्चा रहे वास्ते कोई हूं तो कोई तरीके की फैशन कर नहीं
0: फैशन नहीं होनी चाहिए आप और जो पहना हुआ है वो सब तू हमें दे फिर देखो एक छोटी सी बात भी बताओ हालांकि आप और बहनों ने भी खाए हमें अपर जो 3-4 साल बच्चे छोटे छोटे 2-3 साल 5 साल 6 साल तक देख लो हमें जो हुई ना अपर जो अपर टाइम में जो आप गगरी जगह ना कहता फ्रॉक फुगा बना दिखता आज भी थे पहना
1: बहुत
0: ठीक है और फिर तीजी 2-3 जने आज रे जो है पहले तरह से कुर्तिया नोड़ा चलियों वो पहना हमें तो देखो वो मैं सुंदर कौन लगी
1: फराक पेरोड़ी मनो तो डाब रहे
0: हैं बुर्जो लगी बुर्जो सुंदर लगी हमारी और लाडा भी सब
1: लाडा भी सही बात है और वो जो सूती आज पर पता नहीं चिकन कारी भी फराक
0: हाँ। हो
1: वो तो हूँ देखो यार जी जावे के छोटा टावर कोई वह तो वो ना पहना क्योंकि वो टावर में बच्चा रूप खुले प्लस ये जो की हुई उम्र शरीर खुलो रहे पग खुला रहे, हाथ खुला रहे, गर्मी के मौसम में जो वो ना सहूलियत चाहिए वो सहूलियत होने वाली हमें, वो जाली वाला आजकल जो चल रहा है नया जाला कपड़ा थोड़ा नाला
2: छोटी सी फ्रॉक पहनाओ लाइट कलर हो एकदम हल्के गुलाबी
1: छोटी छोरी नरोड़ी पहराई
2: है जितो ज्यादा हो सके पाछा हो वैसे सब तू तो देखियो जावे तो अपे बात को है कि बीती को बिसारी है तो दागी की है बात है पर हमें परिस्थितियां आड़ी हुई है गुंजन मैन के अपे को है कि ना बीती को बिसारी मत बीती में जो अपर अतिनी स्थितियां उवे में थे आओ और थोड़े बच्चों ने भी लाओ
1: बीती में परंपराओं ना हाज जीवित रखो आदर में वो ना खत्म मत होने
2: बस एक बात है जो हवाओं को कौन भूल मार दे हवाओं ना हावी नहीं हो दे और आप रे जो ऐसे थोड़े चेहरे भी बात मारे हार तो आप रे
1: इस तरह की बात भूल गया
2: तो बढ़िया है और जीत सुनाओ तो भूल गया
1: ना ना हम तो नहीं करी सखिया रे वास्ते पहले सुना तो जरूरी संदेश मेरे बाद में तुमसे एक मीठो प्यारो फूट को गीत
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: वाह मदन, मैं तो सोचू फिर मेरे बरसा तो और माँ गवर जाते हूँ तो बढ़िया
1: तो
0: बात है।
1: बढ़िया वही जो देखो शुभ हो जो बढ़िया काम है आप लोगों ने गवर जाना तो फिर कोई जरूरी को नहीं कि 15 दिन ही पूजो, साल भर गवर जा रहा है जरूर पे दिखाना पे अलग अलग
2: तरीके से
1: अलग अलग रूप में
2: पूज रहे हो।
1: पूज रहे हो गवर जा तो हर हर रूप हर जगदम्बा रहे हर रूप में आप गवर न मांगे। आप बात कर रहा था कि भावना होना समझनी चाहिए
2: ओ तो आप बात करी भावना और ही करी तो छापो मौसम माथे भी आया मौसम में एक बात रह गई स्वभावन वो पहले कहना चाहिए कि आप गर्मी सर्दी भी तो तेवर करा है।
1: हाँ
2: हमें आवे बड़ी बरसाड़ो मानसून है मानसून में आप बीमारियों घड़ी लागी है
1: पर देखो बरसात आवे जब
2: आवे जद तेवर तो बुरी अपन पहले तो
1: समझ करनी पड़े
2: हमें जो आप कहो नहीं बरसात में बीज बेगो निप गई।
1: हाँ
2: तो एड़े में बीजा रे बीजा बीज कर रखे आप गमला में पौधा में छोटा छोटा पौधा जो है नी ये में झट लागे बा मैं तुलसी रो बीज भी कोई नौखे नहीं 12 महीना कौन लागे लेकिन बरसात में वो तुरंत लागे रहो तुरंत पोंगरे तुरंत फले भी है तो एड़ी एड़ी जो छोटी छोटी तैयारियां हैं एड़ी आप और की कर सकते
1: देखो हाँ देखो मैं तो जेठ गयो जेठ का यानी कि एक महीनो तो यहाँ बदक महीनो आ गयो इधे हिसाब से तो हमें आषाढ़ खत्म हो गई
2: हिसाब
1: से तो आषाढ़ पर अपने आषाढ़ तक तो बरसात आ गई और हमें जो तावड़ो तपे नहीं वो हिसाब से लगे कि हमें अपने अंदर राजी होते
2: मैं राजी हूँ
1: तो हमें अपन आलस नहीं करना चाहिए। सब तू तो पहली बात है कि हर घर में हर महिला ना किसान भाई ना बरसात होते चीज चाहिए पहले तो मेरी तैयारी करे भाई ये नहीं कह देखो बरसात आई खेत तो अपने आजकल ट्रैक्टर सुखड़ा दे मशीन सुखड़ा दे 2 घंटा ट्रैक्टर चला दे खेत खड़ी जाओ पर उसके बावजूद कसी है कवाड़ी है पावड़ो है तगारी है निदान करना नाम पोतरी वो चीजा वो सब चीजा है जो हमें हाथी की घर एक तो रखनी और अलावा बीजे नंबर में आ जाए बीज जो अपने जब फसल आवे जब किसान भाई अलग से रखे जब बीज ना
2: बढ़िया
1: बीज रखे तो वो बीज न भी संभाले क्योंकि चौमास में तो भले खेत तो अपने संभाल रखो एक बार दो बार अपने नीच नीच सारा तो महीना तो अगर अपने इली लगोड़ी या जीव लगोड़ी कोई दोनों भाई बहन तो मेहनत
2: अपने
1: तो वो चीज बीजे नंबर में थे हमें तीजे नंबर में थे यो तो बातों घनी है पर देखो पहले तो अपना घर तक कच्चा बिट्टू ना खोड़ा होता घर और मतलब मुड़िया ना खोड़ा होता तो करना पौन जाओ तो वो मतलब आप जो अन टोके में गदो तो कोई काम तो नहीं।

0: मतलब उन्हें तो देना ही पड़ता। और हमें भगवान की दया से भगवान राजी है, सेंगोरे पक्का करे, पक्का नहीं तो घनी जगह पत्थर लगोड़ा भी।
1: हाँ पत्थर तो लागोड़ा भी सही है।
0: तो वहाँ पत्थर और हमें सफाई है ना, यहाँ बिना में करनी बहुत जरूरी है।
1: मतलब सारो कहना मतलब है कि मोरी सफाई कर रखे है जाना, पानी जो बरसात रो आवे तो झट भेड़ो करी जावे, संचय भेड़ो हो जावे।
0: पर ये तो साफ पानी आवे,
1: साफ पानी
0: जो के टोके में सीधो जो हमें मैं याद आ गया कि कोई आप जो भाई देखो 12 महीना और महीना कचरो तो डागोड़ में से धूल भी आवे होंदी आवे टाबर भी मान लो जो कोई गुठली गुठली हम बुखाए गुठली ना होंदी डागोड़ में से तो कचरो हो गई है।
1: और जगह में हम जो मैं बरसात आ गया होंदी तो आवे जे
0: तो
1: धूल
0: तो यहां दिन और महीना अपन चाहिए कि ठंडी वक्त रहे या तो साकड़ साकड़ बाखोटा तो जो जाओ तो
1: आपने शरीर ध्यान रखे बहुत समझ रहे
0: सुबह सुबह सुबह तावड़ो दिन उगे हुए से पहले पहले चढ़े दिन उगे हुए टाइम एकदम पीली क्योंकि पो फूटे ने वो टाइम नजारा भी बढ़िया हुई और वो हवा शुद्ध हो गई वो भी अपन मिले और वो कौम एडो शुरू हुई और कायो भी गुण आदमी
1: सही बात है।
0: तो अपन यहाँ दिन और महीने डागोड़ो की सफाई करनी चाहिए ताकि अपनी देखो पानी रो संचय थे गुंजन में देखो ना अपन कितना संदेश आवे कि पानी रो ज्यादा से ज्यादा संचय करो
1: संचय करो और व्यर्थ मत
0: गवाओ, व्यर्थ बिल्कुल मत गवाओ। तो अपार है तो हाड़ो जो हमें अमृत वर्ष से
1: ऐ जो अमृत वर्ष है ये अमृत वर्ष वाले पानी ना दो तीन बरसातों का पानी दे दी।
0: हां
1: वो ने आप टोको भर दियो तो 12 महीने आप पीन न को मा
0: जाएगा और चिंता कौन होवे था
1: अपन चिंता
0: चिंता कौन
1: और पीन न पानी पार्लर पानी जो मिल जावे 12 महीने रो तो होड़ी
0: होड़ी होड़ी एकदम शुद्ध पानी की देना
1: पानी ना
0: पड़े। तो आप ये कर सको कि अब डागोलो की सफाई करो और नालियों वालियों जो भली तरह नहीं लगोड़ी है तो भाई सुथरा न बुला दो या कारीगर न बुला दो आप ही परनाल सही करा दो या पत्रों में कई बार हुई के वो जो परनाल बन रही वो कौन भी घना घरों में तो पत्थर सो तो भाई एक एक लाइन में पानी धोते तो वो पानी तो आपको कहाँ संचय करो
1: उरे नीचे एक और तरीका है
0: उरे नीचे जो परनाल बने
1: परनाल बने
0: हाँ वो जरूर लगवावे
1: वो लगा तो सारा पानी भेड़ो है नीचे जगह
0: सीधो टॉकर में ना
1: सीधो आ जाए
0: घना घरों में ऐसी जो करोड़ ऊपर इन दिनों में उरी सार संभाल करनी बहुत जरूरी है
1: बहुत जरूरी है। स्वभाव इनकी वे जा पो कोई टी टॉप खोड़ी वे
0: हाँ
1: वो भी जरूरी है तो वो पानी घरों में मरे और वो कदे कदे हादसे रो कारण बन
0: जाए बन जाए
1: पूरी वजह से क्योंकि अपना अपने एक भी जो जमी है ये घनी ऊंडी गोनी
0: हाँ
1: और घनी ऊंडी
0: नीव ज्यादा
1: कोनी नीव घनी ऊंडी जावा कोनी
0: जावा कोनी
1: जे ऊंडी भी मेले तो नीचे होकर कई बरड़ भी निकले मेट भी निकले तो वो की के दबावे जाना
0: हाँ
1: तो उए वजह से भी कदे कदे पानी जे मरे तो वो पाछी दबना चालू जाए केत के रेड़ा हादसा हो जावे कि ढूंढा खिर जावे
0: गिर भी जावे
1: और कदे के छत खिर जावे तो पुराना जो घर है उन्होंने सार संभाल टाइम टाइम होनी जरूरी है।
0: बरसात रे मौसम में तो
1: अति आवश्यक है। अजय कोई नवो घर भी बनावे नहीं
0: हाँ।
1: तो भी सलाह दे के कोई नवो घर भी बनावे नहीं तो भी एक बरसा रो कारण पछे वो घर में रहन जावे क्योंकि कई बार की वे मोरे साथ भी हो चुका और मोरे एक और में जान पहचान वाला है मोरे साथ जो कि नयो घर बनाए तो और बनाने 6 महीने बाद हालांकि वो गया को नहीं था वो घर में 6 महीने में बरसात आई बरसात होकर जो बंदियां थी वो तो टीपों से पानी अदर धार में आया कोई
0: मैं बोलो
1: सही हो ही को नहीं का कोई हाँ। तो नहीं पहुंचर गया कहीं था की दो
0: बजे नहीं के मकान बनावा तो कारीगर है
1: कारीगर
0: है खुद तो कौन बनावे और हर वक्त तो मत्थे
1: माथे कौन बैठ सके तो ये नहीं की है संभाल ये तरीके से हो सके कि आपको एक बरसात का डर आपको नठा बढ़ जाएगी के लीक ला के पानी टपक सके के आपन नुकसान हो
0: सके ढड़ाई चढ़ाई तो भी ध्यान
1: डाल डाल ली थी
0: डाल डाल अगर जो गलत डाल दे दे तो भी मुसीबत
1: हो भी मुसीबत हो जाओगे
0: और पानी तो देखो एक के भी रस्तो करा जाए
1: बूंद भरी पानी रहे और जे डाल मन से पास से गिरे पानी तो के दिया है के दिया है इसको तो ए जापता थोड़ा जरूरी है ये रहला जवाब है एक और जाप तो जरूरी है बरसा ले रहे दिनों में आपको दुखी करा मन मन से
0: कैसे
1: ए माखी और मच्छर जगह न जगह गैरेज करा करता है भाई तो घड़िया की हूँ
0: तो अरे ना ना यहाँ तो गए तो नहीं मौसम आप और दूसरा
1: मौसम आप और दूसरा
0: मन बने तो ए मौसम रामेवा
1: मौसम रामेवा है मौसम ना पर जी है आप हमारे जी है
0: जी भी तो आप हमारे
1: आप हमारे जी है कि जाते
0: हैं जाते
1: हैं यह सो अपना हमें यह है कि जीवन चक्र जो आप हैं आप और है वो एक ही बीजे माते निर्भर है
0: निर्भर
1: हमें बकरी घास ना खावे बकरी ना शेर खावे तो बात तो वही तो जीवन चक्र अपनी जो प्रकृति है ये में जितना आप जीव जंतु है सब एक दूसरे माते निर्भर है और कोई कह रहे खावन छू कह रहे की खावन छू और जीवन
0: यापन देखो मच्छर सिर्फ और सिर्फ अपन आया है मच्छर काटे तो अपन मलेरिया हो सके
1: देखो
0: बिमारी घने तरीके रे बीमार
1: तो है तो को है भले पड़ती भी है पर आपा सावधानी
0: तो रखनी
1: चाहिए। ये रे मतलब है तो कोनी कि आपा हमारे समझ आए प्रस्तुत हो जाओ
0: ना। देखो ये में देखो आपा हम बात करी कॉटन की सूती।
1: हां सूती कपड़ा नहीं
0: तो सूती कपड़ो इन दिनों रे महीनों तो अगर देखो आपा रंगण में सुए या डागोल में सुए हमें भले लाइट है पंखा है बाकी पहले कोनी था क्योंकि घना ही लोग अजा तक पंखा पसंद कौन करे रात रे ठंडी
1: मच्छरों
0: से भी बचाव हो जावे और अपने हवारो भी आनंद आराम से ले सको।
1: अरे मक्खियां जो ऐसी करे गंदगी ये समय में जी रखोगे तो अपने बनोड़े खाना ना
0: हमेशा तो हमेशा ढकते
1: हमेशा ढकते रहते तो बारह महीने रो कम है कोई वर्षा वाले रो उन्नाले रो सियाले रो कम ही बनी है बारह महीने रो कम है जब भोजन जो बनाओ वो ना हमेशा ढक
0: हमेशा ढकते रखो
1: जितनी जरूरत मैं वो टाइम गार्डियन पास ढको ऐ तो
0: ना ये दे भी है मुझे मैंने आपको बात बता सो दोनों ना तो हमें जो भोजन तो ढको रोटी ढक रखो साग बनाए ढक रखो दाल है चावल सब ढकोड़ी हमें अपे जी कुर्सी से दाल पूरी से रहे हो
1: ओ बार खुले में रह गई
0: ओ कुर्सी दाल मत आप पूरी सी बचे ढकने नीचे रख दी तो कुर्सी तो देखो खुली रह गई
1: खुली रह गई सही बात है
0: तो ओ कोई भी नुकसान होना रहा किसी चीज से हो जाए
1: सही बात है
0: तो अपर कटोरो रखे एकदम सब कुर्सियां रख के मत ढक दे
1: मथे ढक दे बिल्कुल सही बात है तो बहुत बढ़िया बात बताई थोड़ा खर्चा मैं बड़े कम ही दी जाए छोटा छोटा बिंदु है
0: तो है
1: देखो अपन अपन रसोई में अपन चतुरीता बतावे और अपन सबरो बनो बतावे तो एड़ो सबरो बनो तो बिल्कुल रखना चाहिए और ये सुखी है कि आप आपरो भी बचाव करें गंदगी से खुद ना बचावे परिवार वाला ना बचावे आजकल की है कि बीमारी अब ऐसा खेत कहीं निकल के आ जाए
0: में अपने शरीर और मन में इतनी ताकत होती कि छोटी मोटी जो मक्खी मच्छर खा लियो या कोई तो ये सुखी प्रभाव को नहीं पड़ता। और हमें तो कहते नहीं मेरा मोमोलिया जरा शरीर हो गया मेरा मोमोलिया थोड़ा देखो
1: ना ओ छोटेड़ा है मखमल वे जरा
0: मखमल लाल
1: लाल देखो ये लाल
0: रंग को सब सब तो हमें मनुष्य जात रो शरीर ओड़ो हो गया
1: ओड़ो
0: मोमोलिया दाई हमें थोड़ी आंधी बरसात बती वे तो बीमार थोड़ा एक अदो मच्छर खावे तो बीमार मक्खियां बैठ गया नुकसान हो गया खाने पीने में थोड़ी कुछ आ गए बीमार मतलब झट करता पहले ये बीमार को नहीं होता
1: फिर
0: ठीक है समय है पर ये समय ना देखते थके सिर्फ और सिर्फ सावधानी।
1: हाँ सिर्फ सावधानी बीजों की भाई की आपको की अगर आना तो आप कूलर और भाई हवा खाओ कूलर भाई ए सी भी यारी हवा खाओ नहीं आदत हो रही तो बच्चे की भाई की कूलर में जब बरसात आवे तो मौसम ठंडो हो जाए तो कूलर में पानी भरोड़ा पड़ जा रहा
0: है मच्छर आवे
1: वो मच्छर आवे अरे अपने गाँव में की भाई के पानी तालरा में भरावे तो तालरा में जे पानी भेड़ो भेड़ो रहे वो तो काम धीरे धीरे लार्वा पैदा हो मच्छर और वही वजह से मच्छर तो मच्छर तो हो से ही
0: घर
1: में सावधानी रख सको हर जगह में तो आपको पहुंच भी सको तो ये उपाय है कि एक तो मच्छरदानी रख रहे हो करो रोज रात रो सूची पे मच्छरदानी एक प्राकृतिक रूप से अपन सुरक्षा प्रदान करे मच्छरों से बनस्पत की आप को बाजार में बिकन आ रहा
0: होड़ा भी होड़ा है
1: जैसे होना
0: नहीं तो ये भी वही हमें धूप धुए वो धूप थोड़ा सी करो तो मच्छर जाएगा
1: कोई तो हूँ कह रही है सच्चा ना जहरीली जैसा वाली चीजों का उपयोग करो जिसके अंदर बिका ऐ करना ज्यादा ठीक है धूप करो कपूर बाड़ो आपो छोड़ो बाड़ो
0: बाड़ो
1: नींबू पत्ता बाड़ो लौंग में नींबू गाछ रखो जो घरेलू उपाय उपयोग करो तो आपके शरीर में नुकसान नहीं है क्योंकि आप जहरीली गैसा वाली जो चीजें लाए बाड़ा नी मेरी वजह से पूरा कहीं कहीं तो बीजा
0: जबकि
1: वो एक तो कारगर कहीं कौन और कारगर की है कि थोड़ी घनी जहरीली गैस
0: उस मच्छर दौड़
1: आपको की करे कमरा बंद रखो बच्चे को मैं जगह वो जानो गैस मई रही मई रही और वो मई जो रही वो अपने ऑक्सीजन है बड़ी अपने
0: शरीर में असर करती
1: असर करे यो कोनी के एक बार जगाई ना अपन असर कर गई लंबे समय तक जब आप ये उपयोग करे तो ये रा दुष्परिणाम गहरा
0: हो सके
1: तो एडी चीज नो अपन आगे ज रखो अपना जो देसी तरीका है वो उपयोग करो और वही तरीके से जो मस्त मस्त रहो ना आगे रखो
0: तो मंदिर में वो वाली बात है का पौना पहले कई जगह भूत काल में तो नहीं याद करना चाहिए पर कई बातों में
1: एकदम भूत काल जब पर काम है भूत तो लेन भविष्य री आधार रखे जाओ अपने इसलिए पहली कहावत है બિલકુલ સત્યાનો સડાસો મીઠો.

0: वाह वाह,
1: मारो पिया गयो परदेस लालू खारो गाड़
0: या
1: बहुत सुंदर गीत सुनाया था। गीसर हो गया
0: पकड़ लिया जाए तो
1: यानी अपर आयत्र जो कलाकार है ना मुझे आवाज मीठी है गौर करी।
0: अच्छा
1: हालांकि संगीत तो एक ऐसी चीज है जो बढ़िया लगे ही पर कह आप रे जो गौरी बात जी है आप रे जो चीज हो ज्यादा बढ़िया लगे तो अपर आप रे जो कलाकार है अपन चाहिए आप ज्यादा उमो न सुनो।
0: देखो आप रे कलाकारों ने महत्व देना और उन्होंने ऊंचे उठाना है अपनी जिम्मेवारी है। आप जिके क्षेत्र में रहे पड़िया जिको अपने एठला छोटा मोटा भी कलाकार है मैं कोई संगीत से जुड़ो जरूरी को नहीं कोई हस्तशिल्प है कोई मूर्तिकार है कोई जो पेंटिंग करने वाला
1: कुंभार है सुतरार है ना ये
0: कोई भी कई कई कला
1: कसीदाकारी कोई अगर अपन बहनो दस कोई महिलाओं कह नहीं ग्रुप बना के ना पैसा सरकार जो सहायता करे वो
0: तरीके
1: सहायता समूह तो अपन जो बहनों जरूरी है वो जो काम कर रही है तो अपन ये चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा बनती कोशिश बनती कोशिश उमोर संपर्क में रहो उमो स्विच खरीदो और उमोर चीज ने आगे से आगे बढ़ावा दी
0: कला रो प्रदर्शन सीधो सोशल मीडिया वाले तो ये माथे भी की है कि कोई आपकी कला प्रदर्शित करे तो उन्होंने भी अपन सराहना हुए माध्यम
1: से देनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े
0: ताकि वो भी इसी जगह तक पहुंचे सिर्फ अपने क्षेत्र तक नहीं रहे जितना घना हो ना हमें जो को लाइक करने की बात है
1: ये एक नई चीज है
0: नई चीज है तो ये भी प्रचार करने का एक तरीको बन गया आधुनिक सारे साथ में जुड़ के अगर आप काम करें तो उनमें कोई हर्ज को नहीं
1: भाई यानी कि हर चीज आप कौन प्लस माइनस दे तो यो दबोरा माइनस प्लस ए है कि एक घरे बैठो आदमी अगर कोई सुरी लोग आवे और वो आप मोबाइल में बैठ के कहना सुना रहे है और वो सब जना उन्हें पसंद कर रहे हैं तो ये वीरो बढ़िया हो जाए
0: बढ़िया हो जाए और असल में की कहड़ो ना अपना सराहना देवनी दीजिए और हमें तो सब में ध्यान है जो अच्छी चीज तुरंत वायरल
1: हो जाए
0: और वो ना क्योंकि पसंद किया जाए तो कलाकार केद भी है तो कलाकार ना पर कुछ जगह जो नहीं कह भी देखिए आप और समाज में
1: कटौती
0: हुई
1: गलत
0: वास्ते गलत शब्द इस्तेमाल मजाक बनाई जावे। देखो शुरुआत कोई व्यक्ति केस तो करते कदे ना कदे केस तो शुरुआत करते अगर वो आप ये माध्यम से शुरुआत करे तो आप चाहिए कि उन्हें सराहना दो उन्हें प्रोत्साहन करे
1: आगे बढ़ावे और हो सके तो सहयोग करे कोई चीज अगर से सहयोग कर सकता
0: है। अच्छा आप कोई चीज भी अच्छी नहीं भी लग रही है तो आप उन्हें सलाह भी तो दे सकें कि तू ये जगह माते यो नहीं करके यो कर
1: ना देखो
0: ए पर सार्वजनिक रूप से ना वे सब परस्पर मिल के वो ना सलाह देनी चाहिए ताकि
1: हाँ
0: ताकि एक ही होया करे कि आजकल सोशल मीडिया उपयोग जब करो है तो वो जगह मत है ओ चीज बुरे वास्ते गलत चीज लिखनी चालू हो जाए
1: ओ गलत
0: ये तो आप कोई कलाकार ना दबाव ना प्रयास करे उन्हें उत्साहित करने का प्रयास आप उन्हें जो करना चाहिए पूरी जगह आप मेरी कला में दबाव ना करो।
1: देखो गुंजन मैंने एक बात और कही शायद कला की बात करी है कि अपन जो विशेषकर अपर बाड़मेर जैसलमेर जो इलाको है ना अपर ये में कलारी जब नौ माविया जो तबलेरी या ढोलकरी या हारमोनियम की जब बात चले तो अपन सीधी अपर जो है मिरासी जाती है ऐ जपनो पण भाई ऐ जाओ समझ में आवे
0: हां समझ में आई जावे
1: ये रे अलावा अपर कोई अगर जे ढोलक बजावनी भी सीखे तो कैसे की करे तेरा ढोल की
0: ते कह दे
1: तेरे बड़े चली बजाए
0: ते कह दे बजाए दी जो
1: ये तरीके आज रो जब युग बदल गयो है हमें जो एरे बात है कलकत्ता साइड जाओ बिहार जाओ बाहर जो मोटा मोटा शहर उनमें हर घर में हारमोनियम है हर घर में तबलो है
0: कलाकार
1: और हर हर घर रो हर सदस्य संगीत सीखोड़ो है और वो संगीत जो को सीखे वो बाकायदा रागों में से सीखे तो वो हमें जो अपर जो घराना है शास्त्रीय संगीत का जो घराना जो वो जो मोटी मोटी हस्तियां हैं जो विदेशों में भारत का नाम रोशन कर गया तो वो भी तो ये तरीके से चीज सीख के आगे
0: सीढ़ी आगे बढ़ी से
1: और हमें अभी गुंजन बहन के हमें आज के युग में चित्रकारी संगीत और जो बड़े कही है कसीदाकारी हमें स्कूलों में भी ये पाठ या ये जो टीचर तो लग रहा है हमें संगीत रहा टीचर हर स्कूल में चाहिए क्योंकि जब प्रार्थना करे तो आगे से देखो खाली अपने उगता और प्रार्थना हो
0: जाती
1: हमें प्रार्थना में बाकायदा
0: हारमोनियम बजे
1: बाकायदा ढोलक बजे कॉम्बो बजे और वो छमछमदाई हुई
0: छमछमदाई
1: तो वे सो बच्चों में की उत्साह हुई और उन्होंने सिखन दी ललक
0: पैदा हुई। अच्छा, धीरे धीरे जो बजावनो आवे तो वो तुम्हारी ताल भी खुले।
1: हाँ
0: तो वो जिके बच्चे रो जुड़ा हर बच्चे रो तो
1: तरफ
0: जुड़ा होकर मैं पर जिके में थोड़ी सी ज्ञान रहे ये रो या जिके में वो हुनर होना चाहिए तो वो में और निखार आना
1: चाहिए।
0: पर स्कूल में भी एक स्कूल रो है भी है कि स्कूल में बच्चे टीचरों ना शिक्षक चुको भी होशियार उन्होंने उठा पड़ जाए कि बच्चों की लायक है बच्चों की लायक है बच्चों तो वह फायदा उन्होंने हुए तरीके से गाइड करे करो। पर जब स्कूल की बात चली है तो गुंजन बहन देखो चलो स्कूल चले हम तो ये चले हम में बच्चा तो चलते ही पर साथ ही साथ जो माता और सारी भूमि बढ़ते है।
1: देखो सुबह सुबह बैगो उठना और वो आने देखो डेढ़ महीने से छुट्टो तो दूर वास जाए तो सारा ना चले
0: छुट्टाई हो ही कोनी वो परसों तो मां जाए के एड़ो जोन भपरायो के ते पूछो मत लुगा नो बैगियो उठायो नो आयो धर्म पुण्य करवाया।
1: अच्छा
0: मतलब साथ को नहीं खाओ सच्चे
1: साथ खायो वो भी बराबर लगती
0: है बाकी रहे और हमें बाकी बेवनी बेड़ा बसी चालू हो जाता
1: है वो आप मन मुताबिक था कदे उठियो ना आई गया तो ठीक है कदे नहीं ना आई गया तो कोई जबरदस्ती को नहीं। और हमें जब बच्चों और स्कूल खुल जाते तो वो जरूरी है वो जिम्मेवारी वाली बात है।
0: देखो बच्चों और स्कूल जब खुले नहीं तो सुबह सुबह जो हड़बड़ा हुए नहीं
1: कुएं
0: में हूँ देखा कई बार आपो भी गाँव घर में देखा है तो बच्चों वास्ते जो बढ़ाना हुए नहीं कभी कभी लेट और मोड़ हो जावे टावर यार करे कि मैं स्कूल में मोड़ो गया से मैंने बाहर खड़ो करते तो एक ऐसी सिचुएशन है कि भाई माया भी पूरी कोशिश करे कि टावर मोड़ो नहीं है पर कभी कभी हो भी जाते
1: जा
0: तो कुछ तैयारी और कुछ चीजें ऐडी हो जा करी जो आपको सौ में बनाए तैयारी कर रखो रात भी
1: सुबह अपन वक्त कम
0: तो सुबह अपन कम करना पड़ेगा जो हमें कोई सब्जी बनाने मान लो
1: सुधार रख दे
0: सुधार रख दे
1: सुधार रख दे
0: ठीक है
1: बर्तन वे तरीके से बर्तन चाहिए तो वो उठाई पड़ी हो तो ये ना पर टाइम लग
0: जाए ना पर टाइम लग जाए
1: और ये तेल की गलोड़ी तलोड़ी में निकलो ना
0: नहीं
1: तो टाइम लग जाए
0: चमक मसाला
1: तो मसाला तो जरूरी
0: है एक भी छोटी सी बात
1: भी जाए
0: जो करो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जल्दी जो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि बच्चा ना एक तो सुबह ताकतवर खाना हुए
1: पौष्टिक हुए
0: पौष्टिक भोजन में जो आपको घास के दो और वो आदत भी एक ज्यादा के यही खाना है स्कूल में।
1: और देखो बच्चों ने देखो अपन चीज खुआनी है तो टिफिन में जरूर डालो ताकि उस टाइम उन्हें भूख लग रही है तो वो खा से
0: अवश्य
1: खा रहे तो नखरो कर से
0: हाँ।
1: तो बीजी चीज मैंने देखा ही खाओ
0: भले आधी खा से
1: हाँ।
0: पेट में
1: एक दिन बगाड़ से दो दिन बगाड़ से
0: तीन दिन बगाड़ से तो दिन में खा से
1: खा से सही बात है।
0: तो आज के युग में जो माताओं है वो की करे के टाबर में कौन भावे तो यह घर बना दो यह चीज कौन भावे तो यह चीज बना दो अरे तो एक दिन बिगाड़न दो भूख लगन दो अच्छा देखो
1: भूख मरता भाजी
0: भाजी खावे
1: पर वो चीज करे कौन तो आपे तो आज के बच्चों ने कैसा के जितना ज्यादा हो सके पौष्टिक आहार ही टिफिन में
0: पौष्टिक आहार और कई कई बच्चों ने मैं देखा टिफिन में लाओ दे क्योंकि कुछ समय मैं भी स्कूल में बिताए हुए टीचर ग्रुप में तो जो फास्ट फूड वाली चीजें होती
1: है वो गलत है
0: वो झट तुरंत बनी दे मिनट में तो वो ले पाता है। एक भी जो चीज अच्छा अब जो कहे ना कि रात भी देवर कर रखे
1: हाँ।
0: कुछ लुगाया में देखे हो बच्चों रहे थे वो कहे कि मैं रात रात आटो वो संग रखा
1: वो गलत है
0: गलत। तो ऐसे अच्छे ने बताना चाहिए कि आटो वो तुरंत उसमें रो और तुरंत बनाए रो कौम रो है अगर तो रात रो राखी हुई सुबह की कौम में रखो तो वो थोड़े मतलब थे ऐसा सोचो कि थोड़े बच्चे रहे वास्ते वो कोई तरीके का फायदा बन ले वे सिर्फ मडे वालों पेट भर से बाकी वे कोई गुण शरीर में लागे
1: तत्व सारा
0: खत्म हो
1: जाए अपर तो शास्त्रों में खड़ो अपर विद्वानों कहे अपर अगला माइक कह गए कभी आटो उसमें घर में नहीं रखता भी कौन
0: अजो भी कौन रखे
1: ये तो
0: ताजो घर में
1: अजो भी कौन
0: कौन ही रखे घर घर में कौन ही पर कुछ महिलाओं अड़ी है जो
1: फ्रिज रो लालच करे
0: फ्रिज रो लालच करे तो आप सोचे कि फ्रिज में खराब बनी हुए तो अपनी गलत फहमी है आटो तो रात रो रखना है जिन्हें शास्त्र भी कहे अरे वो शास्त्रों में कवन का कारण है ये
1: जो
0: नुकसान करे तो आटे भी तो बिल्कुल अपन ये सोच के रखना कि जल्दबाजी के चक्कर में आटो ओसन के तो जरूर नहीं रखो नीचे भले कोई तेवर करके रखा तो आटो ओसन के रखना है आपको आप रे सेहत के साथ और बच्चा रे साथ भी खिलवा कर
1: चलो तो थोड़ा सीधा टिफिन में से आ गया
0: जिनमें
1: स्कूल खुली है तब लोग ड्रेस वेस बनावे तब लोग उत्साह करे जब वो अगली क्लास में आया तो उन्होंने भी खुशी है बच्चों और अच्छी खुशी से आप लोग स्कूल और खुद भी पूरा पूरा ध्यान रखा कि साल भर बच्चों बढ़िया पढ़े और आगे बढ़े और पूरा घर देखो टबर और हमें आज तो अपना बहनों ना शुरू शुरू एक भावना से शुरू हो जाता है देखो ठेठ टू ठेठ लपेटी दी तो भाई एक आखिर तो एक महिला है वो भी तो वो कितनी चीज करते हैं तो ज्यादा थकावट आवे तो थोड़ी देर आराम जरूर करे
0: आराम करना जरूरी
1: है जरूरी है
0: वो एक जान भी करे कि एक थकान के बीच में अगर अपन 10 मिनट भी नींद मिल जाए तो अपन शरीर ने वाची ऊर्जा मिल जाए तो ये ऊर्जा लेनी जरूरी है और ये ऊर्जा के वास्ते आप और भी विराम लेना जरूरी है ताकि सच्चा ना

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT Head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. After submitting the report, SIT Head Vijay Vishwas Pant said, "This is a preliminary report. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. The team has submitted its initial course of inquiry. Members of SIT questioned several suspects and Temple Trust officials over the past week. Further action based on the recommendations in the report is expected soon." The Uttar Pradesh government constituted the SIT on the 13th of this month following a request from the Temple Trust after allegations surfaced regarding the misappropriation of donations received at the Ayodhya Ram Temple. A joint team comprising experts from the Forensic Science Laboratory and members of the Special Investigation Team inspected the spot in Lucknow where a massive fire claimed the lives of 15 people yesterday. More from our correspondent.
1: After inspection of the area, ADG Lucknow Zone Praveen Kumar, who is also member of the SIT, said that the team will conduct a thorough investigation into all aspects and examine the responsibilities of every department in detail. On the other hand, the six-member Forensic Science Laboratory team collected evidences from the spot to determine the cause of the blaze and establish the sequence of events. Meanwhile, the Lucknow Development Authority has issued a demolition notice for the building. The three-story building was issued a demolition order in 2016 over unauthorized construction, but it was revoked less than 2 months later. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: The United States has announced a $230 million sustainment package for India's M777A2 ultra-light howitzers. In a social media post, U.S. Ambassador to India Sergio Gore said, "The defense partnership between India and the U.S. is continuously growing and the proposed sale is ready to be concluded." Monsoon has become active again in Maharashtra. Rain continues its spell in Mumbai and nearby suburbs for the third consecutive day today. More from our Mumbai correspondent.
2: Several parts of the island city of Mumbai and its suburbs continue to receive moderate showers since morning. IMD has informed that the southwest monsoon has further advanced into the remaining parts of Central Arabian Sea, some parts of Maharashtra, including Mumbai, and certain parts of central and eastern India. Citizens are also advised to remain alert as there is a strong possibility of moderate to heavy rainfall in some areas of Mumbai city, Mumbai suburbs, and the Ghat regions of Pune, Raigad, and Ratnagiri over the next few hours. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Mumbai.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal today. Heavy rainfall is also expected over coastal Karnataka, Konkan, Goa, Odisha and Telangana till tomorrow. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh and Uttarakhand for the day. According to the weather agency, heat wave conditions are expected over Chhattisgarh, eastern parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh today, while severe heat wave and warm night conditions are expected over Vidarbh till tomorrow. IMD said a gradual rise in maximum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 days. In FIFA World Cup, Argentina's star captain Lionel Messi has created history after he scored 18 goals, surpassing Germany's Miroslav Klose's record of 16 goals to become the highest goal scorer in World Cup history. In a super clash, Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match in Arlington, United States last night to secure a place in the round of 32. With this win, Argentina has entered the knockout stage. Meanwhile, Algeria thrashed debutants Jordan 2-1 in a Group J encounter in Santa Clara, USA today. In hockey, the Indian men's hockey team will take on arch rivals Pakistan in the opening match of the FIH Pro League today. This will be the first encounter between India and Pakistan since their Asian Champions Trophy clash in Hulunbuir, China in 2024, where India emerged victorious with a 2-1 win. Benchmark domestic equity indices were trading nearly 1% lower in the afternoon session today. The Sensex plunged 653 points to 76,441, while the Nifty lost 220 points to 23,883 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Home Minister Amit Shah says Shyama Prasad Mukherjee's dream realized with abrogation of Article 370. National Security Advisor Ajit Doval says opening of Strait of Hormuz will strengthen energy security around the world. Enforcement Directorate conducts searches at 18 places in Tamil Nadu in connection with alleged teacher recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी, पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
4: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
2: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का

0: और मूड जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
0: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
0: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती

0: परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद SIT के सदस्य और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।
1: अपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब चल चुपेगी ये तो बता। छुपने

ये हार नहीं तो और है क्या, दौड़ के आना पास मेरे प्यार नहीं तो और है क्या, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, छुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन सब तल छुपेगी ये तो बता, छुपने

नीचे सांस हुई कोमल तन फल खा ही गया। सुनकर मेरी बात सनम तुझको पसीना आ ही गया। अब दिल की धड़कन न छुपा, सर न झटक आंखें न दिखा, ओ चुपने वाले सामने आ, चुप चुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण बादल से पवन सब चल चुपेगी ये तो बता। चुप

0: लिपटी है दिल से मेरे जुल्फ तेरी पलखाई हुई। देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई। गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ भला। गालों पर जुल्फे न गिरा तू है कयामत मैं हूँ भला। छुपने वाले सामने आ छुप छुप के मेरा जी न जला। सूरज से किरण बादल से पवन सब तलक छुपेगी ये तो बता। छुपने वाले सामने आ।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म तुमसा नहीं देखा का गीत सुना। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था सती परीक्षा। गीतकार थे नजामी और धुन बनाई थी सम्मुख बाबू ने।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है।

0: के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल, युगल स्वर लता मंगेशकर और मन्ना डे की, फिल्म का नाम साक्षी गोपाल।

0: इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया फिल्म रानी रूपमती का गीत। बोल पंडित भरत व्यास की है और संगीत एस एन त्रिपाठी का है।
1: श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार जन जन बाजे पायलिया।

आज बेंगार कोई मार न वेली, निडर डगर में चली है अकेली, ऋतु बसंत आई अलबेली, डार डार बोले सारी कोयलिया, जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन ज

बाजे पायलिया जनन जन जन बजे पायलिया जनन जनन बाजे पायलिया जन जन जन बा जन जन जन बा जन जन जन बा जनन जनन जनन बाजे जनन जनन जनन जनन बाजे जनन

0: jangan nanti, jangan nanti, jangan nanti, jangan nanti.
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प है कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
4: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है पेइंग गेस्ट।
5: रुकते रुकते

अब तक याद है रात गुलशन की, वो चांदनी थी रागनी थी, मैंने देखा तूने देखा, जब कोई चल ही गया चुपके चुपके, रुकते रुकते मैंने देखा तूने देखा, जब कोई चल

berjalan.

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से हमने लिया है। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने, गीतकार साहिर लुधियानवी है और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

थक जाऊंगी समझ न पाऊंगी, कभी शर्माऊंगी कभी थक जाऊंगी समझ न पाऊंगी।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको रोशन के संगीत निर्देशन में फारूक केसर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है अजी बस शुक्रिया। गायिका है लता मंगेशकर।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी दी। तो मंजरी दी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज की विषय है वो पहले बता देते हैं आरती की, हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर, सब लोग हमारे साथी लोग सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक है मैड स्ट्रीट डैन की
2: जी।
1: और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमने, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय है आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत
1: सुन लेते हैं।

की बांध के पायल दबाए बदन को चुराए नाजुक कमर से लगाए खता।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलट पिया चोरी,
1: बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सके, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इसमें दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल। और पेंशनभोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जो जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल, अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छी तरीके से।
0: और आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है, उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है, कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की चीजें हैं उनको अपनाना भी चाहिए, जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपनी वेब साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है, साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए।

वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमन जी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं?
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है? या
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये ना हो
1: खुद ही फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा,
1: पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है
0: जी।
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। जी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दे। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी हो गई और उसको सुन करके तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
0: बिल्कुल काम। पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते तो याद आता नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे इसके साथ, आज ऐसा हो गया, वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे
0: हो, बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा संगीत सुन लेते हैं।
2: मिलती है अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों, जुम्मन कहा
3: दुनिया कह कर नजरों से नजर टकराते हो क्यों, जुम्मन कहा
2: मिलती है अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों, जुम्मन कहा
3: दुनिया कह कर नजरों से नजर टकराते हो क्यों।

0: ये समझो एक भंवरे ने उन्हें फूल समझ के घेरा है।
1: फूल अगर फवरा बनकर बरसाते हो क्यों क्यों जिन्होंने कहा

0: हम देखेंगे क्या कर जाते
1: ये अच्छी तरह हम जान गए तुम कोई बहाना कर लोगे।
0: देखो देखो आज लड़की समझ बहकाते हो क्यों क्यों कुछ मैंने कहा दुनिया कहे डर मुझ

0: तो देखो भाई, इतनी गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए।
1: हाँ,
0: आग में घी डालने वाली बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्रोता?
0: हम साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1, 2, 3, 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल, और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती कि आग आज में आई लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती है। और वो जो मन मुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम,
1: बिल्कुल
0: समय के मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित रखे
1: हैं। ये समझाने की समझ
0: हो जाए।

0: पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
4: अब बताओ तुम क्या करते?
3: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना।
1: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डीन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
2: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
1: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
2: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
1: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
2: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
1: जी, और अश्विनी कहते हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
2: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डीन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक भी हैं।
1: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लॉ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
2: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
1: जी

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया। हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करनी
1: है। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोड़ना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल, हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो सब आंगन जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी उसके उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में
1: मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप छप, इतना मजे आते थे कि मतलब
0: तुम्हें याद है ना जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे क्योंकि पानी।
1: ये मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी, सभी के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहां पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े करते थे, तो बहुत मजा आता था।
1: और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी बेटे अपनी यादें जब करते हैं साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती है आंगन से।
0: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत याद है। और हमारे साथी क्या,
1: बिल्कुल हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारे मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यही बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे

0: पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी नहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है। वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यही बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यही हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
0: वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डालती, वो चुग रही तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन भी कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो दाने डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़ा पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी,
1: और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहाँ जहाँ धूप जा रही है ना वहाँ वहाँ पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में, ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गया सीजन में, तुम भी काट के सब लोग,
1: तो मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का,
0: आनंद उठाते हैं गीत।
1: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

आसान है जन्म है दिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार।

में आई फिर की रात अब बदला से क्या करूं मैं आई फिर की रात अब बदला से क्या करूं मैं याद आएगी।

चपेर बन मेरे यार चपेर मेरे यार चपेर।

0: मेरे यार
1: तो भाई देखो, हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया। इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ। अभी अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: आतिश श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सोनिया।
0: और फिल्म जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की है ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
2: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
3: उसके बड़े कारण, बड़े अस्बाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
2: जी,
3: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
2: जी।
3: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है। किसी की माँ छीन लेता है,
2: ओहो,
3: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
2: जी।
3: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
2: जी,
3: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
2: जी।
3: ये 1984

0: 84 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
0: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओ, तब तो बहुत छोटा।
0: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूं, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
0: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
0: जो पान में सुपारी खाई जाती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो बड़े पैमाने पे बड़े स्रोत से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी,
0: थोड़ा
1: जी।
0: सा ऊपर डाल लेता हूँ। तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था।
1: क्या
0: और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
1: जी, जी, जी।
0: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
0: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन,
0: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था मैंने उसको कुछ घुमाया हुआया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल बज रही थी, और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है।
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती है, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीदा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती है। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है। उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मकता कहते हैं,
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं, हाँ,
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आते हैं,
0: मेरे अंदर का शायर जो है मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम,
0: हाँ, हुआ। हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था। मैं बड़ौदा।
2: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत, जो बचपन में एसिड अटैक का सामना भी कर चुकी हैं। इस संवाद में उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, करियर और सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। चर्चा का संचालन कर रहे हैं मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह वाराणसी में हूँ और हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन?
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की और साथी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया, तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं। फिर लगातार हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए।
2: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल गई?
3: ऐसा एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर उसमें परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, मैं तो खैर टूट ही गई थी। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह से हम लोग पूरा परिवार डिस्टर्ब था, तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष बनी रही।
2: किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया?
3: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में या यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई, घर में बैठी, तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था। ऐसे तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो, और संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही। तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें, तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था। फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया और फिर तब लोगों का सामना करना शुरू किया, नहीं तो मैं तो बिल्कुल निराश हताश से घर के कोने में बंद हो गई थी। और जैसे उम्र बढ़ रही थी, डिप्रेशन टाइप का हो रहा था मुझे कि ये तो बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी आगे। तो पिताजी हमेशा हिम्मत दिलाते थे, फिर मैंने राह पकड़ी संगीत की।
2: संगीत की दुनिया में आने का मन में कैसे ख्याल आया और क्या मिला संगीत?
3: ऐसा है, मेरे पिताजी सितार बजाते थे तो उनको संगीत बहुत पसंद था, और मेरा गला वाकई बचपन से बहुत अच्छा था, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ भी जो पिताजी के दोस्त थे घर पे आया करते थे, तो मेरा गला अच्छा था तो कभी कुछ बदलेस कभी कुछ सिखाए जाते थे। तो सांगीतिक माहौल जो है वो पिताजी से ही मिला, और उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, ये सोच के नहीं ये कभी मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं उलझी रहे, कुछ करती रहे, उसी बहाने लोगों का सामना करना सीखी, लोगों से बात करना सीखी। तो फिर संगीत को पकड़ा, उसके बाद फिर उसी पे चलती गई। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने की, और स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई। और विशेष बात बताने लायक यही है कि जब मैं पीएचडी करने के बाद जब नौकरी ढूंढने लगी तो फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई, और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया, तो बच्चों के साथ रम गई, फिर अच्छी तरह अपने कर्म को निभाती रही, सिखाना बच्चों के साथ, फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ।
2: क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान?
3: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, जब मैं सीख रही थी मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे मतलब बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने, उन लोगों से भी बहुत प्रेम मिला कि नहीं मतलब बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच ही जाओगी। बाकी आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई, और मेरा बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बच्चों को पीएचडी भी कराई मेरे अंदर में, तो मुझे कभी उन्होंने न टीचर मुझे समझा न मैंने समझा कि स्टूडेंट है, अपने बच्चों की तरफ वो समझा, और वो लोग भी मातृवत और बहुत अच्छे मुझे माँ ही कहते थे अभी तक। हालांकि सभी बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्थापित हो गए हैं, लेकिन तो प्यार करते होता, फोन वगैरह आता रहता, आते हैं तो मिलने भी आते हैं, तो वो चल रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई, तो उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले। सीरत मैंने इसीलिए लिखी, और उसको लिखवाने के पीछे भी एक महिला हमारे कॉलेज में हिंदी की प्रोफेसर थी, उन्होंने जब मेरे बारे में थोड़ा सा सुना तो उन्होंने कहा कि ममता अपनी कहानी को लिख कर और लोगों को बहुत प्रेरणा देगी। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर इस तरह सीरत सामने आई। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बनी और महाराष्ट्र में वो प्रदर्शित भी की गई, देखने को मिलेगी सभी को।
2: पद्मश्री सम्मान क्या खास मायने है इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
3: अरे मुझे बहुत मायने रखता है कि मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं। मेरा काम देख करके मेरी लगन और मेरी निष्ठा, यानी 36 ऑपरेशन के बाद शरीर टूट जाता है, मेरी हड्डी इतनी कमजोर हो गई, तरह सा भी कहीं गिर जाती हूँ तो टूट जाती है, लेकिन वो भी झेला। सब झेलते हुए भी मैं अपने कर्म में लगी हुई हूँ और अभी तक रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है, फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
2: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
3: शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है। एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है कि जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है, तो शरीर खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। जो बहुत खूबसूरत रह जाने वाले लोग थे, लेकिन अंत में देखिए लोग कैसे लाचार हो जाते हैं, तो वो तो देखिए शरीर का धर्म है होगा। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, और ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई। मुझे संबोधन मिलते थे इसका मुंह कैसा है, और उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे। इतनी सारे एसिड अटैक विक्टिम तो बहुत सारे लोग काफी हुए। बस ये कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा उसको कोई नहीं जला सकता। आपके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में, अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है। और आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर पे चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना सवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पर चलता रहे जब तक जीवित, लोगों के लिए प्रेरणा बने।
2: क्या बाकी रह गया आप कुछ करने के लिए कला के क्षेत्र में?
3: कोई भी क्षेत्र हो, मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, जब तक शरीर चल रहा है। अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए। और जो भी उससे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी।
2: आकाशवाणी से बात करने के आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसके अंतर्गत आपने सुना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई प्रोफेसर मंगला कपूर के साथ हुई विशेष बातचीत। चर्चा का संचालन कर रहे थे मनीष सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

भी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, अगला प्रसारण हमारे आकाशवाणी मुंबई के केंद्र से हो गया, कृपा प्रतीक्षा करें।

0: और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
1: हाँ, सूरत में
0: जी, सूरत में जी। तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था और मैं सूरत में ही रहता था
0: जी,
1: और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की
0: जी, शीनकाफ निजाम भी आया था इसमें।
1: शीनकाफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, उसका संचालन किया था
0: जी।
1: अच्छा, आपको तो डिटेल में पता है
0: कुंडली अच्छी पता है लेकिन अभी श्रोताओं तो
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली
0: जी,
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी और शीनकाफ निजाम और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी, सब जी।
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे मुल्क में। संदेशे आते हैं, है ना, आए जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था। और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं
0: जी जी।
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर जो मेहमान शायर है दूसरे शहरों से आए हैं और जो नामचीन है, बड़े शायर है, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निजाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी थे।
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि होटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए थे इनकी देखभाल में भी हम थे, जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
0: और उसमें जावेद प्रूफ करने का जरूरत था। हाँ,
1: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। शीनकाफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हुआ। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवानही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा है जो दो जिल्दों में, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी, दीवारों के बीच। वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी और मैंने वो पढ़ रखी थी और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूं।
0: क्या बात है,
1: है ना
0: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा।
1: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी
0: जी।
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की

0: वजह बनी, कारण बनी हमारे नजदीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था
1: बिल्कुल,
0: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, और सूरत में बहुत अच्छा सुनाया था।
1: जी जी।
0: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने, तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
1: क्या बात है,
0: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
1: विविध भारती में आ चुकी
0: है। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
1: अभी भी लगती है
0: उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी, जी।
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर है, काफी पढ़ी लिखी नक्काद है, क्रिटिक भी है और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई है, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में रफिया शबनम आबिदी साहिबा, लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, कि किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए।
1: क्या बात है।
0: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
0: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नजर कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में उनकी बीवी को ऐसा शेर
1: हिम्मत नहीं करते,
0: नजर करने की हिम्मत नहीं करता। अब मैंने जुर्रत कर ली,
1: जी जी,
0: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं।
1: क्या बात है।
0: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्ती का हो जाए।
1: वाह।
0: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया अचानक, इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया उसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमीन पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: अब निदा साहब ने उठ के मुझे माला पहनाया,
1: जी जी,
0: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि जा दे दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी जिंदगी का एक
1: यादगार
0: और पहला बड़ा मुशायरा था।
1: जी जी।
0: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बंबई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला। हाँ।
1: जी जी। तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद आया।
0: इरशाद, इरशाद,
1: इरशाद। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
0: क्या बात है।
1: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए। तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
0: हाँ, ये शेर भी कितना यूनिक है।
1: जी,
0: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ, मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देख
1: जी। तो इसमें तमाम तरह के जज्बात है, हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों की गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाए?
0: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
1: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे, विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी, अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है।
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी,
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो
0: जी।
1: तो सेवी अली नाम है उनका, उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी,
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी।
0: अच्छा, ये बात तो नहीं पता।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी है, वो किताब पढ़ते हैं, नावेल और कहानियां बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी है वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था
0: जी।
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है जो शायद दिल्ली में रहती है या कलकत्ता में रहती
0: जी।
1: है, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला, तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूं लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी 80 तक,
0: भीड़
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थी
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टार फिल्में थी और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे, तो वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया।
1: हाँ, बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप तो हमारे लिए फिल्म बनाई, तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले, पहला वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त आए।
1: तो हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस और वो खुद बनारस के रहने वाले
0: जी, जी।
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं, कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूँ मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहां जाता हूँ अकेला और उसको फील करता हूँ।

0: सिर्फ फील करता हूं खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए आपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा
1: जी, जी,
0: बड़ा खूबसूरत सा नाम भी है बनारस,
1: नंबर पर वही लिखा हुआ।
0: तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस कायम किया तो कुछ 3-4 फिल्में उन्होंने ऐसी प्रोड्यूस की जिनमें वो खुद डायरेक्टर नहीं थे, है ना। एक वार्निंग थी और एक माधुरी दीक्षित और जूही चावला के साथ गुलाब गैंग थी
1: जी, जी, जी,
0: है ना। और इसी सीरीज की एक फिल्म थी जिद
1: जी,
0: जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे,
1: उसमें आपने गाना लिखा है।
0: हाँ, वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वो जो फिल्म थी जिद, वो भट्ट साहब स्कूल की फिल्म थी, महेश भट्ट टाइप फिल्म थी वो। तो अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना, रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले 2-3 गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फोन किया और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था। लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम
0: जिद, उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तो मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

0: तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ है रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू है ना, अच्छा ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी, जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी, ये जो मैंने अभी नाम लिए मैंने जी। ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ तेरी फरियाद हो गया है ना, तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था तो बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तो बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया, पहला तो खई के पान बनारस वाला है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूँ बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया, वहाँ पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ में रेखा भारद्वाज की। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: तो रेखा भारद्वाज भी थे उसमें।
0: हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर वो है जगजीत सिंह साहब, और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ, बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतलब चेंज करते हैं। नहीं, मतलब वही रहेगा, तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है, इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की मौजूद है, नेहा शर्मा उसमें हीरोइन थी, वो मौजूद है, और बाप जो है लड़के का कह रहा है कि ये मर चुका है, तू इसको भूल जा, नई जिंदगी शुरू कर, मर गया ये, कहां इसके अभी चक्कर में है तू। और उसी जगह पे दूसरे लड़के का तारुफ होता है, दूसरा लड़का जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, तो मुझे बताया गया कि यहां से वो गाना शुरू होगा। तो मैंने लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है। अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे। ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहाँ से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे, मतलब अभी है? भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता ये था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना।
1: जी जी।
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में है, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है। जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है
1: जी।
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए।
1: क्या बात।
0: और वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। रात कुछ ऐसे कटी है,
1: रात कुछ ऐसे कटी है
0: कि सहर ही ना हुई।
1: क्या बात है। वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जां के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी बनी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया सुबेर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के एक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवा ने सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र बोहरा का युवा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप की सफलता तक करें मेहनत, अपने ग्राहक की वास्तविक समस्या पहचानें और ऐसा उत्पाद या सेवा बनाएं जिसकी जरूरत वो

0: कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

ओए लम्हो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

जिन्हें चाहूं, जिन्हें पूजूं, उन्हें देखूं, उन्हें छूलूं, जरा बातें तुम हो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे

ओए लम्हो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

दिल्ली जैसे रहना चुक जिसे गाया ए आर रहमान ने और संगीत दिया है ए आर रहमान। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी गैर कॉपरेटिव सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 20 लाख तक संपार्श्विक मुक्त लोन प्रदान करने वाली प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को अपना व्यवहार शुरू करने और विस्तार करने के लिए किफायती वित्त पोषण उपलब्ध कराना है। साथ ही जैसा हम इसी तरह देखेंगे उससे पहले जानते हैं।

साथियों, अभी हम सुन रहे थे फिल्म बॉम्बे से दिल से, जिसका यार रहमान ने संगीत दिया है, ए आर रहमान। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार का गैर कृषि, गैर कॉपरेटिव सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 20 लाख तक मुफ्त बिना गारंटी लोन प्रदान करना है। शिशु, किशोर और तरुण तीन तरीके से इसका दिया जा सकता है। 10 लाख से 20 लाख तक का लोन। यह सुविधा उन दिनों के लिए जिन्होंने पहले तरुण लोन का सफलतापूर्वक लाभ उठाया और चुकाया हो। गैर कृषि आय सृजन गतिविधियाँ, दुकानदार, कारीगर, फल सब्जी विक्रेता, मरम्मत की दुकान और छोटे उद्योग चलाने वाले लोग, समृद्ध कृषि गतिविधियाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, संपत्ति की रसीद, व्यवसाय का पंजीकरण, प्रसारण प्रमाण पत्र, लाइसेंस या अन्य विवरण आदि। साथियों, चर्चा को हम इसी तरीके से सुनते हैं।

0: ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का।
1: साथ में हम सुन रहे थे फिल्म बाजीगर से काली काली आंखें, जिसे गाया है कुमार सानू और सोनू निगम ने और संगीत दिया है अनुमलिक ने। दोस्तों अब सब समय हो चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र भौरव को आगे दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी जैसलमेर का। ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

शाम 6:15 पर आप लोग भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 7 बजे आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंची। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न

दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: पुलक गात आई भरी छाती। हे हा राम लखन उद कर बदती,
1: रही के कहत न खाती मीठी।
0: पुनि धरि

0: सोनी पाती फूल के डोंगा
1: अधिक स्नेह समात नगाता
0: प्रीति पुनीत भरत कह दे
1: सकल

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परियोजना के एमओयू से जुड़े विभिन्न मुद्दों को अंतिम रूप दिया। साथ ही किशाऊ बांध परियोजना पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि यमुना जल परियोजना को दीर्घकालिक नजरिए के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पानी को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का प्रस्ताव है, जिससे वितरण व्यवस्था व्यापक होगी। उन्होंने कहा कि केशाऊ बांध परियोजना के बारे में 6 राज्यों के मुद्दों का समाधान हुआ है। जल्दी ही एमओयू भी किया जाएगा।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरफेस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है, जितना पानी और तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए अहम है, जल्द से जल्द इसे धरातल पर लाया जाएगा। वहीं श्री सैनी ने कहा कि बैठक में वर्षा के पानी को सहेज कर राजस्थान पहुंचाने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज करौली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पांचना संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और अन्य पंच पटेलों की उपस्थिति में समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहे। उधर पांचना बांध से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के खंडीप गांव में किसानों का महापड़ाव आज भी जारी रहा। वहीं धरने के कारण कुछ समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जयपुर में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में रियायती दरों पर जमीन आवंटन के प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जोधपुर के उम्मीद अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसूताओं, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से बातचीत कर उपचार व्यवस्थाओं पर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को चिकित्सा सेवाओं को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती राठौर ने कहा कि हर मरीज को बेहतर और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आमजन को चिकित्सालय के प्रति भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
2: इनके जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। लोगों का इतना फेथ है तभी 25-30 हजार लोग यहाँ पे आते हैं। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
0: गौरतलब है कि पावटा अस्पताल में सिजेरियन के बाद प्रभावित प्रसूताओं के इलाज और सेहत की सतत निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर अपडेट देने के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद आज जयपुर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने शहर में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अग्नि सुरक्षा इंतजामों की जांच की। इस कार्रवाई में 14 कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों को सील किया गया, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों की अनुपालना के लिए नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार CUET पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। NTA के अनुसार इस साल मई महीने में हुई प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नेफेड के नीलामी पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने अगले 2 सालों में दलहन की खरीद सीधे किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने किसानों की भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
3: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए फसलों को सुरक्षित रखने और आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। अलनीनो संकट के संभावित असर से निपटने के लिए आज उन्होंने कृषि मंत्रियों और मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से किसानों को समय पर स्पष्ट सलाह पहुंचाने की बात कही।
4: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहाँ विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक हो हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी, भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना लें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करने दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
0: राज्य में आज कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून गतिविधियों का असर देखने को मिला। सीकर, झुंझुनू और करौली में दोपहर बाद मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार छा गया, साथ ही बूंदाबांदी हुई। झुंझुनू में कई स्थानों पर करीब आधा घंटे तेज पानी बरसा। उधर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़, राजियासर और अन्य कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। भरतपुर में भी धूल भरी आंधी चली, उसके बाद कुछ देर हल्की बरसात हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलौदी सहित आसपास के क्षेत्रों में भी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज, वहीं 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 जून तक जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी देखी जा सकती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा कि देश की महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी की प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास पर डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का त्याग और राष्ट्र प्रथम का संकल्प देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज भरतपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित किया।
5: तो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 26 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान में जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। जयपुर में कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ। किसानों से सीधी खरीद के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो प्रभाव से कम बारिश की आशंका को देखते हुए आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों पर व्यापक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। जून का महीना अब अपने अंतिम चरण में है। इसी के साथ जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पिछले दिनों कई क्षेत्रों में हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद कई जगह मौसम सुहावना हो गया। इससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों ने खरीफ फसलों की तैयारियां तेज कर दी है। खेतों की जुताई, बीज और खाद की व्यवस्था का काम चल रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा है। विभागीय अधिकारियों को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर जल संरक्षण, जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों को लेकर जिले में अनेक गतिविधि आयोजित की गई। आइए भीलवाड़ा जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में इस चिट्ठी में जानते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का लाभ जिले के किसानों को भी मिला। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती किसानी के कामों में सहायक साबित हो रही है। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, पशुपालन, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हुरुड़ा पंचायत समिति के खारी का लांबा ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पशुपालकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी। अगले दिन गांव में भ्रमण कर लोगों से सीधे बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य संकाय शुरू करने, खेल मैदान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कामों की घोषणाएं की गई। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं और सुझावों से प्रशासन को अवगत कराया। जल संरक्षण को लेकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। लोगों को जल बचाने और परंपरागत जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टा वितरण, पेंशन संबंधी काम, प्रमाण पत्र, चिकित्सा सेवाएं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार इन शिविरों की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों को प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आमजन को राहत मिली है। परिवहन के क्षेत्र में भी भीलवाड़ा जिले को हाल ही में नई सुविधाएं मिली है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है। इन बसों के माध्यम से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। ई बसों के चलाए जाने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा की सुविधा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जिले में प्रशासन और लोगों की ओर से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मॉनसून में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से लगभग 35 लाख पौधे लगाने की योजना पर चर्चा की गई है। वन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष का

0: कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियां हुई। जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आम जन को योजनाओं की जानकारी दी तथा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: फैलिया आज री खास खबर। यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन ने लिए नवी दिल्ली माए अहम बैठक हुई। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्थावा ने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारा सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपाया माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। समाचारा रे साथे में संगीता शर्मा। अबे समाचार विगतवार। यमुना जल परियोजना रे क्रियान्वयन सू जुड़िया न्यारा न्यारा पहलुआ माथे आज नवी दिल्ली माए बैठक भी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परियोजना ने एमओयू सू जुड़िया न्यारा न्यारा मुद्दा माथे अंतिम रूप दियो। साथ ही किसाऊ बांध परियोजना माथे भी विचार विमर्श करो। इन मौके माथे श्री पाटिल कहो कि यमुना जल परियोजना ने दीर्घकालिक नजरिए रे साथ है आगे बधायो जा रही है। इनरे तहत पानी ने पाइपलाइन रे माध्यम सू पहुंचाने रो प्रस्ताव है जिनसू वितरण व्यवस्था चौकी वेला। वणा कहो कि किसाऊ बांध परियोजना रे बारह माए छह राज्य रा मुद्दा रो समाधान भी है, वेगो ही एमओयू भी करो जावेला।
1: दोनों मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। दोनों ने जो हरियाणा से पानी जो सरफेस वाटर आज उसका नया एमओए करके उसका पानी का जो उनका अधिकार है जितना पानी और तय हुआ है उतना ही पानी के लिए पाइपलाइन से पानी राजस्थान तक ले जाने के लिए वो दोनों में सम्मति बनी है। आने वाले मंडे को उसके ऊपर साइन होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के सामने वो एमओयू का उनको एक्सचेंज करेंगे।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा कहो कि यमुना जल परियोजनावां सू सेखावाटी खेतर खास है, बेगो बेगो इन्हें धरातल माथे लायो जावेला। वठीने श्री सैनी कहो कि बैठक माए बरसात रे पानी ने सहेज राजस्थान पहुंचाने ने लेर विचार विमर्श भी करयो गयो। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम आज करौली पहुंचा, पणा सर्किट हाउस पांचना संघर्ष समिति रा प्रतिनिधियां रे साथ बंटल करी। संघर्ष समिति रा अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई और दूजा पंच पटेलारी उपस्थिति में समस्या रे समाधान खातिर विचार विमर्श करयो गयो। इंद्रे चालता करोली विधायक दर्शन सिंह और जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा भी मौजूद रहा। बठीने पांचना बांध सू सिंचाई खातिर नहरा माए पानी छोड़ने ने लेर सवाई माधोपुर जिले रा खंडीप गांव माए काश्तकारारो महापड़ाव आज भी जारी रहो। बठीने धरने रे कारण कुछ वक्त ताई रेल यातायात भी प्रभावित रहो। मौके माते मोटी तादाद माए पुलिस बल तैनात है। जयपुर माए आज मंत्रिमंडलीय उप समिति री बैठक भी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवारी अध्यक्षता माए हुई इन बैठक माए प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला माए रियायती दरा माथे जमीन आवंटन रा प्रकरणा माथे विचार विमर्श करयो गयो। बैठक माए शिक्षा स्वास्थ्य और शहरी विकास सू जुड़िया प्रस्ताव माथे समीक्षा कर सहमति दी गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर आज जोधपुर रा उम्मीद सफाखाना रो जायजो करयो। वणा प्रसूतावा चिकित्सका और नर्सिंग स्टाफ सू बणतल कर उपचार व्यवस्थावा माते फीडबैक लियो। साथ ही अहलकारा ने चिकित्सा सेवावा ने बत्ती प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनावण खातिर जरूरी दिशा निर्देश दिया। इनरे पाछे खबर नवीसा सू बणतल माए श्रीमती राठौर कहो के हर मरीज ने चोखो और सुरक्षित इलाज मुहैया करवाणो राज्य सरकार री सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम जन ने चिकित्सालय सारू भरोसो बनायो राखनो चाहिए। वणा कहो कि सगड़ा सफा खाना माए मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल एसओपी री पालना पक्की करने खातिर जोर दियो जा रियो है।
2: इनके जो

0: कोऑपरेटिव बोर्ड है, लेबर रूम एरिया है, महिलाओं से भी बात करी है, डॉक्टर्स और स्टाफ से भी बात करी है कि किस तरह से वो लोग एंश्योर कर रहे हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स की जो मेडिकल की प्रोटोकॉल्स हो उनकी पालना हो, यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, लोगों का इतना फेथ है तभी 25-35 हजार लोग यहाँ पे आते हैं, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, सारी फैसिलिटीज है।
1: ध्यानजोग है कि पावटा सफाखाना में सीजेरियन रे पाछे प्रभावित प्रसूता मारे इलाज और सेहत री सतत निगरानी राखी जा रही है। जिला प्रशासन वाणी स्वास्थ्य स्थिति माथे अपडेट देने खातिर मेडिकल बुलेटिन जारी करने रा हुकुम दिया है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड रे पाछे आज जयपुर माए फायर सेफ्टी व्यवस्था मारी जांच खातिर खास अभियान चलायो गयो। नगर निगम और पुलिस री टीमा ने शहर माए कोचिंग संस्थावां और लाइब्रेरी रा अग्नि सुरक्षा इंतजामारी जांच करी। इन कार्रवाई माए 14 कोचिंग संस्थावां और पुस्तकालयां ने सील करयो गयो, साथ ही 24 कोचिंग सेंटरां ने फायर सेफ्टी नियमारी अनुपालना खातिर नोटिस जारी करया गया। अभियान रे चालता नगर निगम पुलिस और प्रशासन री संयुक्त टीमा ने संस्थाना माए फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और फायर एनओसी सू जुड़िया दस्तावेजारी जांच करी। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 स्नातक दाखिला रा नतीजा घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नतीजा जारी करता थका बतायो कि उम्मीदवार CUET पोर्टल माथे आपरा स्कोर कार्ड देख सके है। NTA रे मुजब इन बरस मई महीना माए प्रवेश परीक्षा माए 11,32,000 पढ़ेस की भीड़ा व्याहा। ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो नवी दिल्ली में शुभारंभ करयो। इन मौके माथे श्री शाह कयो कि काश्तकारां ने सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार कर दी गई है। वणा कयो कि सहकारिता मंत्रालय आवता 2 वर्षा माए दलहन री खरीद सीधे काश्तकारां सू खरीदने रो लक्ष्य राख्यो है। वणा किसानां री भागीदारी ने मजबूत करने खातिर खरीद कामा माए बिचौलिया री भूमिका ने खत्म करने रो हेलो करयो।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू बिरखारी आशंका ने देखता थका फसला ने सुरक्षित रखने और जरूरी कृषि प्रबंधन उपाया माथे खासा दिशा निर्देश दिया है। अलनीनो संकट रे संभावित असर सू निपटने खातिर आज वे कृषि मंत्रियां और मौसम महकमारा अहलकारा खातिर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। वणा कयो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशरा सगला जिला खातिर आकस्मिक योजनावां तैयार कर ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री राज्य सरकारां सू आ योजनावां ने प्रभावी रूप सू लागू करने री अरज करी है। साथ ही वणा वैज्ञानिका सू काश्तकारां ने बकत माथे सही सलाह पहुंचाने री बात कही है।
3: जिस तरह की सहयोग की आपको आवश्यकता होगी हम करेंगे, जहां विशेष परिस्थितियों में जाना आवश्यक होगा हमारी टीम आपके सहयोग करने आएगी, भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी कुछ राज्यों में जाएंगे। लेकिन आप मानसिकता ये बना दें कि संकट से विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं, डट के मुकाबला करना है और हमको इस संकट से पार अपनी जनता को, अपने किसानों को, अपनी कृषि को लेके जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके अपने किसान को किसी कठिनाई का सामना न करके दें और इन विशेष परिस्थितियों में भी संकट की हम अन्न का हो, फल सब्जी का उत्पादन हो, उसको प्रभावित न होने दें। इसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करें।
1: और अब मौसम, राज्य माए आज कुछ एक थोड़ा माथे प्री मानसून गतिविधियां रो असर देखने मिलियो। सीकर और करौली माए दोपहरा पाछे मौसम बदलियो और तेज हवावारे साथ धूल रो गुबार छाग्यो, साथ ही बूंदाबांदी हुई। वठीने श्रीगंगानगर जिले रा सूरतगढ़ राजियासर और दूजा कई इलाका माए तेज हवावां साथ बरसात हुई। भरतपुर माए भी धूल भरी आंधी चाली। इनरे पाछे कई देर हल्की बिरखा हुई। बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी समेत आसे पासे रा खेतरा माए भी हवावारे साथ बादलारी आवाजावी देखने मिली। मौसम महकमा रे मुजब आ 7 जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज, बठीने 12 जिला माए येल्लो अलर्ट जारी करो गयो है। 27 जून ताई जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग माए कठई कठई गरज चमक रे साथ हल्की बिरखा हो सके है। इनरे चालता कई जगह माथे झोंकेदार हवावां चालने रा भी असार है।

0: दक्षिण राजस्थान माए बरसातरी गतिविधियां माए कमी देखी जा सके है। भारतीय जनसंग्रह संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री पुण्यतिथि माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूजा कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी वाने सोशल मीडिया पोस्ट माए श्री मोदी लिखियो कि महान विभूति डॉक्टर मुखर्जी रा प्रखर विचार और आदर्श हर पीढ़ी ने मातृभूमि री सेवा खातिर प्रेरित करता रहेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आपरे निवास माथे डॉक्टर मुखर्जी रा फोटो माथे फूल चढ़ार वाने नमन करो। मुख्यमंत्री कहो कि डॉक्टर मुखर्जी रो त्याग और राष्ट्र प्रथम रो संकल्प देश सेवा रे मार्ग माथे छालने खातिर प्रेरित करतो रहेला। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भरतपुर माए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रे बलिदान दिवस माथे राखीजा कार्यक्रम माए भाग लियो। इन मौके श्री शेखावत कहो कि वणा आपरो सगलो जीवन सेवा खातिर समर्पित करो।
1: जो आज का दिन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरा भारत एक ऐसे महामना, एक ऐसे विचारक, एक ऐसे विचार के प्रतिपादक व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहा है, जिसने संघर्ष का रास्ता चुनकर के एक विचार को स्थापित किया।
0: कोटपुतली खेतर्रा बनार गांव रे कने आज एक सड़क हादसा माए एक मीनक रे टावरी री मौत वेगी। हादसो तेज रफ्तार डंपर री चपेट माए आने सुव्यो। घटना रे पाछे खेतर माए शोक री लहर दौड़गी। युवा मामला और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कहो कि भारत अभूतपूर्व खेल क्रांति रो साक्षी बन रियो है। सोशल मीडिया पोस्ट माए आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस माथे आप रे संदेश माए डॉक्टर मांडविया कहो कि देश री खेल क्रांति खिलाड़ियां ने सशक्त बना रही है और हर नागरिक ने खेला ने जीवन शैली रे रूप माए अपनावन खातिर बधाओ दे रही है। वणा कहो कि देश उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान रे ओलंपिक मूल्यां रो जश्न मना रियो है, जको दुनिया भर माए लाखों लोगों ने प्रेरित करे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातिर 31 जुलाई ताई आवेदन किया जा सके है। सगड़ा नामांकन ऑनलाइन लिया जा रहा है। यह पुरस्कार 15 सू 18 बरस आयु वर्ग रा टाबरा रे असाधारण साहस और सृजनात्मकता ने समर्पित है। आने 6 श्रेणिया माए दिया जावे है। राष्ट्रपति कानी सू यह पुरस्कार हर बरस नवी दिल्ली माए आयोजित खास जलसा माए प्रदान करा जावे। जलसा माए आयोजन वीर बाल दिवस रे मौके माथे 26 दिसंबर ने करो जावे है। और आखिर माए खास खबरां एक और फेरू सुनो। यमुना जल परियोजना वारे क्रियान्वयन ने लेत नवी दिल्ली माए अहम बैठक भी। राजस्थान माए जल प्रबंधन ने मजबूती मिलेला। जयपुर माए कोचिंग संस्थाना माए अग्नि सुरक्षा व्यवस्था माने लेर विशेष अभियान चलाया गया। नेफेड रे नीलामी पोर्टल रो शुभारंभ। काश्तकारां सू सीधी खरीद खातिर जरूरी व्यवस्था तैयार। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलनीनो प्रभाव सू कम बारिश री आशंका ने देखता थका आवश्यक कृषि प्रबंधन उपायों माथे व्यापक दिशा निर्देश दिया। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए।
1: फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
3: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।

किसान वाले के सभी श्रोताओं ना लाल जी भाई घना घना और तो किसान भाइयों के भी गर्मी का मौसम है और किसान भाई जो को हमें अगली फसल की तैयारी में भी जुट गया उसे ताकि हमें ऑनलाइन जो समय है जो बरसात के समय से तो सबसे पहले तो अपन एक काम करना है कि अपन जो भी कृषि यंत्र है और अपन सार संभाल करनी है जो अपन ले गया था तो और मत ये तो पूरा सार संभाल करनी है और दूसरों अपन गहरी जुताई ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो गहरी जुताई का सबसे फायदा का नहीं है, देखो पहले फायदा यही है कि भाई देखो आप ज़मीन है देखो इतने टाइम से आप फसल कौन बो रहा था तो वह फसल ना आप जब आप जमीन में पलटी मार सो तो जो भी आप जमीन में मोए जो भी खरपतवार या अंसा बीज या कीड़ा मकोड़ा जो भी जो आप जमीन में मोए होता वो सब आ जाए बाहर जब बाहर आ जाए तो उसकी वजह से कि भी तो घर मेरी शुक्र और वो ख़त्म हो जाते और अपोरी जो ज़मीन है वो अपोरी सुधर जाते। और दूसरी चीज़ एक और कि भाई इस समय समय एक भी हुई कि भाई अपन अपना जो वो खाद है बीज है वो भी अपन खरीदने वाला समय है तो अपन एक जो भी सरकारी समिति है उसको अपन बढ़िया खाद बीज खरीदना है विशेषकर तो बीज खरीदना है क्योंकि हमें देखो बीज भी कई प्रकार आ गई तो अपन बीज भी सोच समझ लेना है और उसके साथ साथ जो भी आप बीज रिपोर्ट ले लो पैकेज ला तो ये पैकेज में थे अपन वो कद प्रोडक्ट बनियो है और कद वो एक्सपायर डेट है या फिर अपन भली बात ही डाक पर लोन दीजिए और वो पक्को बिल भी ले लोन दीजिए और उसके साथ साथ आप जब खेतों में जमीन भी आप करो तो अपन को भी यंत्र है कृषि यंत्र है या ट्रैक्टर है या वो टोलियाँ हैं या बीजा भी कहें कच्ची यंत्र है तो और भी अपन साफ सफाई बढ़िया कर कराए डीजल की पूरी व्यवस्था कर रखनी चाहिए क्योंकि खेतों में अपन जो भी अपना जनरेटर चलते या अपना ट्रैक्टर चलते तो बगैर डीजल चले उन्हें तो अपन हर चीज़ की पूरी पूरी माँ को व्यवस्था कर रखनी पड़ती है। और एक और चीज़ है कि भाई आप अभी देख रहे हो कि भाई किसान भाई है जो खेतों में हो सके तो रासायनिक प्रकृति है तो अपन ये रासायनिक का प्रयोग वर्षों बचना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई अपन आप जो खाद है वो आप खेत में तैयार करनी चाहिए जैविक खाद तैयार करनी चाहिए जो आप जो टाइम है तब ये टाइम रहा है आप खेतों में आप जैविक खाद तैयार कर सकें तो अगर किसान भाई अगर आप खेत में जैविक खाद तैयार करें तो सबसे बढ़िया फायदा होना यही है कि भाई कम लागत में कम कीमत रहें और खेतरी चीज खेत में तैयार हो जाए और खुद हाथ में प्रोडक्ट बन जाए और अगर ये चीज़ आप बना लो खुदरी खाद खाद बना लें आप जैविक खाद तो उसको अपने खेतों में फ़ायदा भी है और दूसरों अगर आप यो गवर्नमेंट लाइसेंस ले लो या गवर्नमेंट प्रोडक्ट ले लो कभी मे से जैविक प्रोजेक्ट कर सकती आप जमीन में उत्पाद पैदा करें तो सब जैविक चीज़ है तो पूरे भी अपन सरकार द्वारा ये लाइसेंस प्रदान किए जाए और ये अपना जो भाव है बाजार में जो रेट मिले वो भी अपन संग्रह में से तो आप एक कह सो कि भाई आप अगर जितो हो सके जितो अगर आप खेतों में जैविक प्रयोग करो तो वो देखो फायदा भी करेंगे है फायदा ये हुई कि सबसे पहले फायदा ये कि आप देखो जमीन सुधर जाए आप और जमीन में कितने भी पोषक तत्व वाली कमी है तो वो आप जैविक खाद जो बढ़िया हो जाए और जमीन जो भी आप क्यों बिगड़े और जमीन भी आप सुधर जाए और जो उत्पादन क्षमता है वो भी जमीन धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अगर आप ये जगह आप देखो कभी आप रासायनिक उपयोग करें तो देखो रासायनिक उपयोग करें तो नुकसान नुकसान है पहली चीज़ कही जाए कभी थे रुपड़ा रुपया दे के पैसा दे के उन्होंने थे बाजार से खरीद लें क्योंकि बहुत महंगा मिले। दूसरों के जब ये छिड़काव करो तो अपन ये जो भी नियम कायदा है यदि अपन ये साइड हवा चल रही है अपन वो साइड ही छिड़काव करना है पशु समूह छिड़काव नहीं आ रहे पहली चीज। दूसरों जब भी छिड़काव करो तो आँखें में चश्मा लगाओ शरीर को ढक रखो ठीक है ना तो ये भी चीज़ अपन ध्यान रखना पड़े। तीसरी बात कि जब भी ये डबला खाली हुए तो इन्हें अपने बच्चों से आप बूढ़ा माइट हूँ आप पशु हूँ इनके दूर जमीन में गाड़ दो या के दिला दो तो देखो कि भाई अपन यदि बहुत सी चीज़ों ध्यान रखना पड़े जब अपन एक चीज़ और जब आप छिड़काव करें जब अपन आप शरीर भी पूरा ध्यान रखना पड़े जब वही छिड़काव अगर आप अपनी भूमि में करो आप खेती जमीन में करो तो देखो कि भी उधर भी हाल की अंतर से कि भी आने समय में से

हो जाते कि पहले पहले थोड़ा बढ़िया फसल मिल जाते 2 साल 4 साल, लेकिन आने वाले समय में यही है कि भाई जो ज़मीन है वो पूरी ज़मीन पर उदास बंजर, पूरी जो उत्पादन क्षमता है उदास ख़त्म। तो ये वास्ते आप देख सकते हो कि भाई किसान भाई ना कि भी इसे खेती बाड़ी करो, बढ़िया करो, नया नया नवाचार करो, लेकिन आप भी जाऊँ जोखिम में मत डालो। फिर जो तो रसायनों का प्रयोग कर रहे हो वो थोड़ा शरीर वास्ते भी ख़राब है और सेवन मतलब यहाँ पर ज़मीन वास्ते भी ख़राब है। और नहीं था आवे कि भी ये गंगा नगर पंजाब से एक ट्रेन चलती थी बीकानेर, वो ट्रेन वहाँ पर गंगा था कैंसर ट्रेन, क्योंकि पंजाब रे मोहे इतो रासायनिक और प्रयोग हो खेती खेती रे मोहे कि वो तो हर घर में एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। तो अपन यही चीज़ देख ली है कि भाई जब अपन था है कि भाई इस बहुत ग्रसित बीमारी हो जाए तो कोशिश आप ये करो ना कि आप भी वो चीज़ से बचाओ और कोशिश ये करो कि भाई आप अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रयोग करो। और जैविक प्रयोग करने से देखो अपना फायदा भी ज़्यादा है। पहले फायदा अपन यही है कि फिर तो अपन देखो अनाज है और देखो अपन मूल्य है वो तो रासायनिक फसल ज़्यादा अपन ज़्यादा मिले पहली चीज़, दूसरों अपन लागत कम आवे, और तीसरो अपरेमो कोई अड़ा नियम का जागो नहीं कभी थोड़ा मुंडो दगड़ा है या शरीर पैर रखना है या तो फूट रखना, मतलब देखो आप हिसाब से जो नॉर्मल किसान भाई जो पहले खेती बाड़ी करता था आप आपसे पहले जो कोई किसान भाई खेती बाड़ी जैविक चीज करता था ए रासायनिक और प्रयोग तो जब आप पानी की मात्रा ज़्यादा हुई ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन लेना है कोकर करना है जब जैविक रासायनिक और प्रयोग ज़्यादा हुआ, लेकिन आपको अगर परंपरा खेती में जाऊँ तो आप पहले किसान भाई जैविक प्रयोग करता था, आप जो कोई भी खाद खेतों में तैयार करता था और फसलों में थे वो जलता था। बाकी मतलब यही है कि भाई अपन अपन पक्षी परंपरागत शैली अपनानी पड़ते हैं, लेकिन परंपरागत शैली भी अपना पक्ष अपना नई टेक्निक हो नई जो को भी है ना अपने वैज्ञानिक पद्धति चलने के तरीके से, तो आप जो को रासायनिक है उन्हें भी आप जैविक से आप फैल कर सको। तो कोशिश अपन यही करनी है कि खेतों में बढ़िया उत्पादन करो, बढ़िया नया नवाचार करो, और ये नवाचार में आपको यही करना है कि भाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा जैविक प्रयोग करके अपना खेती बाड़ी ना बढ़िया ऊँचे ऊँचे जानी है, और जो को भी किसान वाला सपना है कि भाई मानो आय दुगनी करनी है डबल करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा खेती आय लेनी है तो उधर भी घना ही मेरा साधन है प्रयास है, तो उस कर सको आप आगे भी बातचीत जारी रख सो और हमें आपको सुन दो राजस्थानी लोग।

बहुत ही बढ़िया सुनिए राजस्थानी लोकगीत। और आप बातचीत करें आप कि भाई अपन खेती बाड़ी जमा है बीज उत्पादन वास्ते बीज उत्सव करना चाहिए और अपन उस जमीन भी सुधर जाए। और भी ऐसा घना ही प्रयास है जैसे तुम अपनी जमीन सुधर सके,

जमीन में खेती बाड़ी में कम मेहनत में अपन अधिक लाभ भी मिल सके। तो बात करा कि सबसे पहले तो अपन मिट्टी की जाँच कराने चाहिए, और मिट्टी की जाँच तो अपन ऐठा पड़ जाए कि भाई अपनी जो जमीन है उनमें की गई पोषक तत्व की कमी है, पहली बात। और दूसरों के अपने अड़ी कई योजनाओं हुई जिते मार्फत जिते माध्यम से आप जो अपर खेती बाड़ी है उन्हें और भी थोड़ी सरल बना सकते हैं। और सरल बनाने तरीका ये कि आप अपने जमीन में हुए पहले तो आप एक खेती बाड़ी साथ साथ आप उसमें फलदार पौधा लगे। एक टाइम हो तो जैसे अपन ये अपने जमीन में हुए इस क्षेत्र में अपन कैर सौंगरी बैर एक मिलता था खोखा मिलता था, लेकिन हमें समय बदल गए हम पर एक खजूर मिल रही है अनार मिल रहा है और साथ साथ अपन बैर भी मिल रहा है और बैर भी कई प्रकार मिल रहा है कई प्रजाति वाले मिल रहे हैं और उसके साथ साथ ये अपना किन्नू भी मिल रहा है और भी बहुत ज़्यादा फल मिल रहे हैं अपने। लेकिन इस मतलब यही है कि भाई वही है कि भाई किसान भाई आपकी मेहनत तो आप आमदनी को कर डबल करें या दूर के प्रयास हो गए और कम मेहनत करें। मैं आपको इतना पौधा लगाऊँ आपको पौधा ना मैं बाल्टी पौन भी कर सकूँ तो उर वास्ते एक आइए आपको कह सकते बूंद बूंद सिंचाई। अगर आप जैसे करें ट्यूबवेल है तो वो माध्यम से वो बूंद बूंद सिंचाई माध्यम से या फवारा पद्धति से आप खेती बाड़ी कर सकें और बूंद बूंद सिंचाई माध्यम से जेब भी पूरा पौधा लगोड़ा है तो वो जो हर पौधे में अगर आप बूंद बूंद सिंचाई ट्रिप योजना आप लगा दें तो उस फायदे मिले कि आप हर पौधे न पानी मिलना चालू हो जाए एक टाइम से अपन पानी मिलना चालू हो जाए जैसे उसकी पूरी पूरी पूरी मेहनत कर जाए। दूसरों चाहे आप पौधो ऊँचो हुए नीचे हुए ढड़ोल हुए चढ़ाई हुए नीचे हुए कि भी हुए वो उन्हें पानी बरोबर मृत हो रहे थे तो एक तो ये हो गया कि आप पानी की बचत हो गई क्योंकि उन्हें आपके हिसाब से पानी में से अपनों दूसरे माध्यम से पानी पकाने जट हो गए। और तीसरी बात कि आप पानी बच जाओ पानी बच जाओ मेहनत बच जाओ और आप पैसों बच जाओ अगर सब चीज़ें अगर खेती बाड़ी में बच जाए तो किसान भाई आपकी जो मेहनत है वो आपकी ऊर्जा है वो आप बड़ी जगह भी वो लगा सके। तो कहने मतलब यही है कि भाई कई योजनाओं आ रही है जेकर हमारे किसान भाई है जो अगर बरबर उपयोग करें और सरकार द्वारा भी उन्हें पूरी पूरी सहायता मिल दी जाएगी और हर सहायता में उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। तो कहने मतलब यही है कि किसान भाइयों ने जितनी भी योजना चल रही है वो योजना और पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो कोकर उन्हें उपयोग लेना कोकर उन्हें उपयोग लेना वो भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तो देखो कि किसान भाइयों ने सरकार द्वारा खाद बीज को ले जाके और समझ लो कि थे जो को फसल भंडारण करे वो तक सरकार द्वारा उन्हें की न की सहायता की जाए। तो कहना मतलब भाई ये कि भाई सब किसान भाई ने सरकार द्वारा हर स्थिति परिस्थिति में मोए सहयोग किया जाए तो किसान भाइयों ने भी ये चीज़ है कि भाई हर जो भी योजना बने किसानों वास्ते तो वे हर योजना और किसान भाई ने भी पूरा पूरा लाभ लेने वास्ते पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। तो हम देखो जो पीएम किसान योजना भी चल रही है तो इधर में भी साल भर में उन्हें 2-2 हज़ार रुपये खर्चा 300 रुपया मिल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से भी मिल रहा है 1000 रुपया और KCC करे उनमें भी सरकार द्वारा लोन दिए जा रही है। मतलब ऐसा घर कृषि यंत्र है तलाई मथे भी लोन दिए जा रहे है और वो साथ साथ तरपाल है तरपाल मथे भी दिए जा रहे है तो अगर खेती चार बाउंड्री करना बाउंड्री कराना चाहो तो वो मथे भी थोड़ा सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। तो केवड़ मतलब यही है कि भी सरकार है जो को किसानों वास्ते हर क्षेत्र में तैयार है और यही है कि किसान भाइयों वास्ते बोलो तत्पर खड़ा चाहिए और हर योजना और जानकारी लेके और किसान भाइयों योजना और पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो सपोर्ट यही कह सको कि भाई किसान भाई है वो आपकी मेहनत से आपकी खेती में चार चांद लगावे और बढ़िया से बढ़िया नवाचार करे और जो को अपनी क्षेत्र एक सीमांत क्षेत्र जो खेती बाड़ी है उन्हें बहुत ऊँचे में ले जावे और बढ़िया खेती बाड़ी करे तो उससे आप किसानों और लाभ भी दुगुना हो जाते और कृषि में भी नया विस्तार हो जाते। आपको आगे भी बातचीत जारी रख सर हमें आप सुन रहे राजस्थान लोगी।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अलरखा खां और जाकिर हुसैन साहब का तबला वादन। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

मिटी तुमसे सब पनहारियां, दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना तेरे गीत, आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और गीत को संगीत से सजाकर रजनीकांत के अन्ना ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे अवतार फिल्म से एक आवाज से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और गीत को संगीत से ज्यादा रखने का आइए सुनते हैं।

हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया।

आता है होता है ये भी के जमीन से भी कभी आसमान मिल गया।

दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का

लगता है कि यहाँ मिल गया। एक भटके हुए साहिब को तो

0: तो ये लगता है कि यहाँ मिल गया, कि यहाँ मिल गया।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्मी की गीत आवाज थी मोहम्मद रफी। गीत के बोल थे कैफे आदमी की और गीत को संगीत से पैदा मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं गीत।

जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी जो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार

अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रांति सिंह गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। गीत के बोल थे संतोष आनंद के और गीत को संगीत से ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा।
1: पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
3: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
4: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है और इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
5: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
5: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फलस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फलस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
5: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
6: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज कि एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश

0: बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिखड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: निजी श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और इस कार्यक्रम
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज ब्रिक्स हैज वाइटल रोल इन डीपनिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस लाइक टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट्स पद्म अवार्ड्स एट सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी। जर्नलिस्ट पी नारायणन, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan, and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunderstorm in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cybersecurity to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Deva Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch, who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing

अब तक हम आह भरेंगे, आजा तो बात करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे, ये सच है हे हे हो, हे हे हो। सच है मैं हूँ एक दीवाना, ये माना न जाना, तू कहाँ चली तो मन चली।

रुद्र ऐसी आई हुई है, बदली भी छाई हुई है, तू तो घबराई हुई है, मुझसे शर्म।

0: पागलों की तरह फकीर को क्या हुआ?
1: अभी आप सुन रहे थे मंचली फिल्म से ये गीत, आवाज थी किशोर कुमार की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और गीत को संगीत से ज्यादा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अभी आप सुन रहे थे लोको फिल्म से गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत के बोल थे आनंद बख्शे के और गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारना ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

这人家穿的马褂包，也要满地走。

ऐसे ए तो हरे की मिठी बोली कोयल री रे बागरी।

गरीबा राज कोयल रिहने की धीमी बोली कोयल मजीरी बागरी मरा जाए।

আমারি হালে পাতি রে রে গুর জতিনি হালে পরদেশ রে।

मरे आज तक करे न विरो गिरा हो आज तक करे न विरो गिरा मरे कोई ने इधर गिर जा

0: हरी हरी डोला भली होई
1: आलो तुम बोलो रे ते तुम बोलो रे दीदो डोली दारा रे
0: माजी बेंदनी बेंदनी लाखो जोगीरा दातनी में किती लाखो माजी बेंदनी बेंदनी लाखो जोगीरा

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामे गजल।

दिल मुझे देखता क्यों है, बार बार मुझे

इंतजार मुझे।

当年啥个么个事，啥个么个事，么个你，你么个的，你嘛，当年啥个么个事，啥个么当年啥你的么个么个事。

أشقي وجهك انتظار مجھے تشنگی تجھے کو انتظار مجھے

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम गजल। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन चिड़ी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं येसुदास के कुछ बेहतरीन चुनिंदा नगमे।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म किशोर के गीत। आवाज थी यशुदास की, गीत के बोल थे रविंद्र जैन के, और गीत को संगीत से गाया था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावन कुंवारे दो से गीत, आवाज थी ये सुदास की, गीत के बोल से पुरुषोत्तम पंकज के और गीत को संगीत से सजाया था राजकमल। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सदमा फिल्म से गीत आवाज़ की यशोदास की, गीत के बोल थे गुलजार के और गीत को संगीत से जाता है इया राजा ने। आइए सुनते हैं गीत।

0: मैं
1: अभी आप सुन रहे थे सुरैना फिल्म के गीत, आवाज़ थी यशोदास की गीत के बोल थे रविंद्र जैन के, और गीत को संगीत से सजाया था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

जाने मुझसे हुई क्या भूल, जिसे भूल सकाना था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मान अभिमान से ही गीत, आवाज येसुदास की गीत के बोल थे रविंद्र जैन के और गीत को संगीत से सजा था रविंद्र जैन ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म शिक्षा से गीत, आवाज़ से यशोदास के गीत के बोल थे जौहर कानपुरी के, और गीत को संगीत से सजाया था बप्पी लहिरी ने। इसी के साथ हमारा यह विशेष फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजे हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिसका प्रसारण हमारे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान

0: चंडीगढ़ एनवेस्ट उत्तर प्रदेश टिल टुमारो एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस न्यूज बुलेटिन।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हुए हैं, हमारे आज की प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। कल 11:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।